नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों दुनागिरी संशोधक और अग्रे को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता, हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का उपचार जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बिस्टेक से एक साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात ढांचे में हुए एक विस्फोट में 54 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हैं। ये विस्फोट कल रात रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। खबरों के अनुसार क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के बाद संयंत्र में परिचालन कार्य दोबारा शुरू करने का काम चल रहा था। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सभी सुनने वालों को और मंजुला तुम्हें भी मेरा यानी रश्मि कुकरेति का भी प्यार भरा नमस्कार।
1: और आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर।
0: और मंजुला सोचो अगर धरती की सांसों की आवाज होती तो वो कैसी होती? शायद बारिश की बूंदों जैसी।
1: बिल्कुल।
0: और पत्तों की सरसराहट जैसी या फिर पक्षियों की मधुर आवाज जैसी। क्योंकि आज है विश्व रेन फॉरेस्ट डे।
1: अच्छा।
0: और रेन फॉरेस्ट जो है वो न केवल हमें स्वच्छ हवा देते हैं बल्कि अनगिनत जीव जंतुओं और वनस्पतियों का घर भी है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा तुम्हारी हमारी हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल सही कहा रश्मि जी। और अब आज का सवाल आप सबके लिए, अगर आपको 2 दिन की छुट्टी मिले तो कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों जाना पसंद करेंगे? अपना जवाब हमें इस मेल आईडी पर भेज दीजिए जो है fmgoldg@gmail.com। वो कौन सी जगह होगी, पहाड़, समंदर, जंगल या फिर अपने घर का एक खूबसूरत सा कोना?
0: बिल्कुल हमें जरूर बताइए। और चलिए हरियाली की ओर और चलिए सकारात्मकता से भरे इस सफर की ओर जिसकी शुरुआत हम करते हैं इस सवाल के साथ। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ये कार्यक्रम जिसका नाम है
1: घर आंगन।
0: जी

0: और अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी शतरंज। और कहते हैं कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, अगर हौसला हो तो कैमरे की एक नजर भी आपको दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा सकती है।
1: और मंजुला, आज बात एक ऐसी ही प्रेरणादायक महिला की हो रही है, और असम की बेटी गीतिका तालुकदार की, जिन्होंने इतिहास रच दिया है। गीतिका तालुकदार फीफा वर्ल्ड कप 2026 को कवर करने वाली भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट बन गई है। और ये उपलब्धि सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे देश, खासकर पूर्वोत्तर भारत की महिलाओं के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत गर्व का ये पल है।
0: बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों, गीतिका इसके पहले भी रूस 2018 और 2022 फीफा वर्ल्ड कप कवर कर चुकी हैं, और अब 2026 में लगातार तीसरी बार उन्हें फीफा से आधिकारिक मान्यता मिली है। उनकी तस्वीरें सिर्फ मैच नहीं दिखाती, बल्कि खिलाड़ियों की भावनाएं, दर्शकों का जुनून और खेल की आत्मा को कैद करती है। गीतिका ने ओलंपिक, विमेंस, फीफा वर्ल्ड कप और कई अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को भी अपने कैमरे में उतारा है।
1: और देखिए, जो ये फोटो, जो स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आज भी महिलाओं की संख्या थोड़ी सी कम है, पर जो गीतिका तालुकदार है ना, उन्होंने अपने हुनर और मेहनत से ये साबित कर दिया है कि सपनों को सच करने के लिए चाहिए सिर्फ जुनून। और हम सलाम करते हैं देश की इस बेटी को, जिसने असम से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मंच पर अपनी पहचान बनाई है।

0: अभी हम सुन रहे थे हेमा सरदेसाई को फिल्म चक दे इंडिया। और रश्मि जी, आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी लेखनी में महिलाओं का बहुत ही सुंदर रोल होता था। सिर्फ कविता और गीतों तक सीमित नहीं थी, उन्होंने समाज, रिश्तों और सबसे बढ़कर महिलाओं के मन को बहुत ही गहराई से समझा। उनकी कहानियों की महिलाएं शांत जरूर थी, लेकिन कमजोर कभी नहीं। उस दौर में जब महिलाओं की आवाज अक्सर घर की चार दीवारी तक सीमित कर दी गई, टैगोर ने अपनी रचनाओं में उन्हें सोचने, सवाल करने और अपनी पहचान बनाने का साहस दिया।
1: जी बिल्कुल सही कहा मंजुला। और अगर आप पढ़ें सिर पत्र, जो इसकी नायिका है मृणाल, इसका सबसे सुंदर उदाहरण है।

0: महिला है जो अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखती है। उसका विद्रोह ऊंची आवाज में नहीं है बल्कि उसके अपने फैसले में दिखाई देता है। वो समाज से ये भी कहती है कि एक स्त्री सिर्फ किसी की पत्नी या किसी की बहू नहीं है, वो है एक स्वतंत्र व्यक्तित्व।
1: और चोखेर बाली की विनोदनी भी टैगोर की बेहद प्रभावशाली महिला पात्रों में से एक है। उसके भीतर भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, बुद्धिमत्ता है। टैगोर ने उनके माध्यम से उस समाज पर सवाल उठाया जो महिलाओं की भावनाओं के समझने की बजाय उन्हें नियमों में बांध देता था। और घरे बायरे की बिमला उसके बारे में आप बताइए रश्मि जी।
0: हाँ बिल्कुल, वो है प्रेम, कर्तव्य और अपनी पहचान के बीच उलझी संवेदनशील स्त्री। उसके भीतर अपने अस्तित्व को समझने की एक बेचैनी है और यही उसे बेहद मानवीय बना देती है। देखिए नष्ट नीड की जो चारुलता है उसको कोई भुला सकता है मंजना? नहीं ना। और घर में सब कुछ होते हुए भी उसका एक अकेलापन है, उसकी अधूरी इच्छाएं हैं और उसके भीतर जो छुपी हुई प्रतिभा है ना, वो सच में दिल को छू जाती है। टैगोर ने ये दिखाया है कि स्त्री का सबसे बड़ा दर्द अक्सर वही होता है ना मंजिला, जिसे कोई भी देख नहीं पाता।
1: बहुत ही खूबसूरत बात कही। और रविन्द्रनाथ टैगोर की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि उन्होंने महिलाओं को देवी बनाकर दूर नहीं रखा, उन्होंने उन्हें इंसान की तरह लिखा, संवेदनशील, मजबूत, सपने देखने वाली और अपनी पहचान खोजने वाली। उनकी लेखनी आज भी हमें एक एहसास कराती है कि महिला को की असली ताकत उसकी आवाज, उसकी सोच और उसके आप

0: आप सुन रहे थे परिणीता फिल्म से और सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज थी। और इस गीत में भी एक प्रश्न था मंजुला, उन्होंने पूछा कि घटा से पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है, और तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही सवाल था ना, जरा दोहराओ तो।
1: मैं फिर से आज का सवाल दोहराऊंगी कि सबके लिए अगर आपको 2 दिन की छुट्टी मिले तो कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों जाना पसंद करेंगे? अपना जवाब हमें इस मेल आईडी पर भेजें, fmgoldg@gmail.com। वो कौन सी जगह होगी, पहाड़, समंदर, जंगल या फिर आपके घर का एक आरामदायक कोना?
0: हाँ, एक बार फिर ईमेल आईडी बता दूं, fmgoldg@gmail.com यानी घर आंगन, fmgoldg@gmail.com। जल्दी से भेज डालिए अपने सवाल, अपने जवाब, और हम आपको सुनवाएंगे जल्द ही।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा पुल जो सीमेंट, लोहे या पत्थर से नहीं बना है बल्कि पेड़ों की जीवित जड़ों से तैयार किया गया है। सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन भारत के खूबसूरत राज्य मेघालय में ये हकीकत है। मेघालय को यूं ही बादलों का घर नहीं कहा गया है दोस्तों, यहाँ प्रकृति और इंसान का रिश्ता सदियों पुराना है। खासकर खासी और जयंतिया पहाड़ियों में ऐसे अद्भुत लिविंग रूट ब्रिजेज मिलते हैं जिन्हें बनाया नहीं जाता बल्कि उगाया जाता है।
0: वाह, क्या बात है। इन पुलों को तैयार करने के लिए रबड़ फिग या भारतीय रबड़ के पेड़ की मजबूत जड़ों को वर्षों तक सही दिशा में बढ़ाया जाता है और बांस और लकड़ी की सहायता से जड़ों को नदी या खाई के ऊपर फैलाया जाता है, जो ये धीरे धीरे जड़ें आपस में गुथकर इतना मजबूत पुल बन जाती हैं कि दर्जनों लोग एक साथ उस पर चल सकते हैं।
1: और इन पुलों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये समय के साथ कमजोर नहीं बल्कि और भी अधिक मजबूत होते जाते हैं। जहां पे आम रेगुलर पुलों को लगातार मरम्मत की जरूरत पड़ती है, वहीं ये जीवित पुल प्रकृति के साथ मिलकर खुद को और भी सुदृढ़ बनाते रहते हैं।
0: और जो मेघालय का प्रसिद्ध डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज है ना मंजुला, वो जो है नोंगरियात में है और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये जो पुल है ये 2 मंजिलों वाला है और प्रकृति और मानवीय धैर्य का अद्भुत उदाहरण है। और वहीं कई ऐसे पुल भी हैं जो 100 से 200 वर्ष से अधिक पुराने हैं और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके जीवन का अहम हिस्सा आज भी है।
1: बिल्कुल। और इन जीवित पुलों को संरक्षित और दुनिया के सामने उसकी महत्ता को पहुंचाने में पर्यावरणविद हेली वॉर का योगदान बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। उन्होंने वर्षों तक इन पुलों के संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता के लिए काम किया। प्रकृति संरक्षण के प्रति उनके इसी समर्पण के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया।
0: तो अगली बार जब आप किसी पुल से गुजरे ना, तो मेघालय के उस अनोखे पुलों को जरूर याद कीजिएगा जिन्हें इंसानों ने बनाया नहीं बल्कि प्यार, धैर्य और प्रकृति के सहयोग से उगाया है। वाकई में मंजुला, मुझे लगता है प्रकृति सबसे बेहतर और सबसे खूबसूरत इंजीनियर है ना।
1: बिल्कुल।

0: अभी हम सुन रहे थे आशा भोंसले और महेंद्र कपूर की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत आदमी और इंसान फिल्म से।
1: और जो सवाल तुमने मंजुला पूछा था ना कि कहाँ जाना चाहते हो, एक जवाब आ गया है। इदरीस सैफी कह रहे हैं कि लद्दाख जाना चाहते हैं। उन्होंने कारण नहीं बताया, पर मुझे लगता है कि जो वहाँ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य है, वहाँ पे पेंगोंग झील है, नुब्रा वैली है, और जो बौद्ध संस्कृति और मठ है, और तारों भरा आसमान है, और फोटोग्राफी का तो वो स्वर्ग है। शायद इसीलिए वो कह रहे हैं, क्योंकि आप भी गई हैं लद्दाख और मैं भी गई हूँ लद्दाख। बहुत खूबसूरत है,
0: बहुत ही खूबसूरत है, और जो वहाँ का नजारा है आपको रियल नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे हम किसी फिल्म में देख रहे हैं वो सारे सीन। तो शायद यही वजह रही।
1: तो हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बाकी श्रोता भी लिखकर भेजेंगे, हमें मेल करेंगे fmgoldga@gmail.com पर, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे।
0: और तब तक बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो हमारे भारतीय परंपरा के साथ जुड़ी है। साड़ियाँ, साड़ी सिर्फ एक परिधान नहीं है रश्मि जी, बल्कि भारत की जीवित विरासत है। इसके धागों में इतिहास है, रंगों में संस्कृति है, और हर बुनाई में सदियों पुरानी कहानियां छिपी हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही साड़ियों की जो केवल सुंदर ही नहीं बल्कि अपने भीतर एक अनोखी कहानी भी समेटे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की नौवारी साड़ी से। नौवारी यानी नौ गज लंबी साड़ी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका ड्रेसिंग स्टाइल जो धोती की तरह पहना जाता है। और कहा जाता है कि मराठा साम्राज्य के दौर में महिलाओं को घुड़सवारी, युद्ध कला और दैनिक कार्यों में सुविधा मिले, इसलिए ये शैली लोकप्रिय हुई। और यही वजह है कि नौवारी साड़ी सिर्फ परिधान नहीं बल्कि महिलाओं की शक्ति, आत्मनिर्भरता और साहस का प्रतीक मानी जाती है।
1: और जो ये विषय तुमने लिया है, मैं समझ गई मंजिला, बहुत खूबसूरत तुमने ये जो नीले रंग की साड़ी पहनी हुई है, और ये साड़ी जो पहनी हुई है ये है मूगा सिल्क की, बहुत सुंदर है। और जो असम की साड़ी है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी प्राकृतिक सुनहरी चमक जो समय के साथ और निखरती है। ये सिल्क बहुत टिकाऊ होती है, और असम की जलवायु में तैयार होने वाला ये रेशम दुनिया भर में अद्वितीय माना जाता है। कई परिवारों में तो ना मंजुला, जो मूगा सिल्क की साड़ियाँ होती है ना, वो पीढ़ियों तक संभाल कर रखी जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और ये साड़ी भी जो मैंने अभी पहन रखी हुई है, मेरी मम्मी का है। और असम की ही एक और खास पहचान है एरी सिल्क, जिसे अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है। इसमें रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। और इसी तरह कमल के डंठल्स के रेशे से तैयार की जाने वाली लोटस सिल्क साड़ियां आज सस्टेनेबल और क्रुएल्टी फ्री फैशन का शानदार उदाहरण बन चुकी है। तो प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और सौंदर्य का ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है।
1: कितना सुंदर विचार है ये कि सौंदर्य भी है और हम संवेदनशील भी है प्रकृति के प्रति। और क्यों ना हम दूसरी साड़ियों की बात करें। बात करें भाई साड़ियों की क्वीन जो है बनारसी साड़ी की। भाई ये वाराणसी की जो कला है उसमें महीन जरी होती है, जो बूटे होते हैं, भव्य कलाकारी होती है, इसीलिए तो बनारसी साड़ी आज भी दुनिया भर की भारतीय हस्तशिल्प की पहचान मानी जाती है। और यही वजह है कि आज भी अनगिनत जो दुल्हन बनती है ना, उनकी पहली पसंद अगर पूछोगे तो वो कहेंगी भाई बनारसी साड़ी होनी चाहिए। और साथ में गुजरात की बांधनी साड़ी, उसके रंग बिरंगे बिंदु डिजाइन जो है वो उत्सव का प्रतीक होते हैं। और कश्मीर की कानी सिल्क साड़ी अपनी महीन बुनाई और शाही अंदाज के लिए विशेष पहचान रखती है।
0: बिल्कुल सही। अगर आप बिहार की बात करें तो भागलपुरी सिल्क साड़ी भी अपने प्राकृतिक चमक और विश्व लोक कला को अपने रंग और आकृतियों के माध्यम से जीवंत कर देती है। वैसे साड़ियों की ये सूची और भी लंबी है। भारत के हर कोने में एक नई बुनावट, एक नया रंग, एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है।
1: लेकिन आज के लिए भाई बस करो, क्योंकि इन धागों में

0: खास है, रंगों में पहचान है और हर साड़ी कहती है भारत की एक नई जगह की कहानी बताती है और संस्कृति की खुशबू बताती है और परंपरा का श्रृंगार छह गजलें लिखता है पूरे देश का प्यार।
1: चुनरी संभाल गोरी

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे को फिल्म बहारों के सपने। और एक मेल लगता है और आ गया जो रश्मि जी पढ़ने वाली है।
1: ये एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं चरणदास जी, ये बता रहे हैं शिमला जाने के उन्हें अच्छा लगता है और वो एक बार बहुत अच्छा संदेश भी दे रहे हैं मंजिला। वो कह रहे हैं क्यों ना पेड़ पौधे लगाए जाएं और पूरी धरती को सुंदर बनाया जाए तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। और वैसे तो मैं शिमला जाना चाहता हूँ पर शिमला जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
0: दोनों बातें कही, उन्हें शिमला जाना भी है और उनका ये कहना है कि अगर हम पेड़ पौधे ढेर सारे लगाए तो हर शहर शिमला बन जाएगा।
1: और राजू अग्रवाल चौधरी हिसार से हैं, ये भी जुड़े हैं।
0: बिल्कुल, तो अब हम बात करेंगे कि अक्सर एक शब्द हम सुनते हैं गृहिणी। अरे वो तो बस एक हाउसवाइफ है, लेकिन क्या ये गृहिणी केवल घर संभालने वाली महिला होती है? शायद
1: नहीं, बिल्कुल नहीं,
0: बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि वो केवल गृहिणी नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माता है। किसी भी देश की पहली पाठशाला उसका घर ही होता है और उस पाठशाला की पहली शिक्षिका माँ होती है। वही बच्चों को ईमानदारी, अनुशासन, संवेदनशीलता और संस्कारों का पाठ पढ़ाती है। एक डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक, सैनिक या नेता बनने से हर व्यक्ति एक परिवार का सदस्य होता है उसके पहले, और उसके व्यक्तित्व की नींव घर में ही रखी जाती है।
1: जी, जो गृहिणी होती है वो दोस्तों भोजन ही नहीं बनाती, परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, घर ही नहीं सजाती बल्कि रिश्तों को भी सहेजती है। वो केवल बजट ही नहीं बनाती बल्कि सीमित संसाधनों में संतुलन और प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। मैं तो कहूंगी सबसे अच्छी मैनेजर जो होती है वो घर की जो गृहिणी होती है, वो

0: वो छोटा सा जिसे कहते हैं ना, एक पूरा घर हाउस होल्ड मैनेज करती है। देखो उसको ना कोई वेतन होता है ना कोई छुट्टी होती है, लेकिन उसे फिर भी उसका योगदान जो है वो अनमोल है। उसके श्रम और त्याग और समर्पण का कोई मूल्य ही नहीं है, वो किसी आंकड़े में मापा ही नहीं जा सकता। वो तो अपने परिवार के माध्यम में, सच कहूँ, समाज और राष्ट्र के भविष्य को आकार देती है। दोस्तों
1: बिल्कुल सही कहा, और आज जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें

0: एक और संदेश आया है हमारे पास पूनम का मुंबई से, वो कह रही है मैं फूलों की घाटी जाना चाहती हूँ. तो ये है वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड के चमोली जिले में है और इसमें यहाँ मंजुला बहुत दुर्लभ और सुंदर फूल रहते हैं और बर्फीली चोटियां, हरी भरी वादियां, वाह शांत वातावरण है. कहती है कि यहाँ पर ट्रैकिंग का बहुत आनंद है, यहाँ पहुँचने के लिए ट्रैक करना पड़ता है.
1: जी बिल्कुल जी जी, मैं जा चुकी हूँ और बहुत ही खूबसूरत जगह है.
0: भाई रास्ते में झरने हैं, नदियां हैं, मनमोहन दृश्य है. तो हम तो कहते हैं आप जरूर जाइए, अपना सपना पूरा कीजिए. और कहीं कुछ मंजुला और कुछ कहना चाह रही हैं?
1: बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आगे आप लोग और भी मेल भेजिए, अपनी इच्छा जाहिर कीजिए कि दो दिन की छुट्टी के बाद आप कहाँ जाना चाह रहे हैं. हमारा मेल आईडी नोट कीजिए, fmgoldga@gmail.com. और अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी जो हमारे सबसे जुड़ी हुई है. हम अक्सर अपने जीवन में तनाव, चिंता और थकान के का कारण काम के दबाव को समझते हैं, समय की कमी को समझते हैं या परिस्थितियों को मानते हैं. लेकिन रश्मि जी, कई बार असली कारण हमारे आसपास मौजूद नकारात्मक लोग, हानिकारक आदतें और टॉक्सिक विचार होते हैं जो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को कम करते हैं.
0: मुझे लगता है उनकी तरफ तुम देखा ही मत करो, है ना. क्योंकि कभी ऐसा सामना भी हो ना जो इस प्रकार के लोग मिले, तो उनसे संबंध तोड़ना हमेशा संभव तो नहीं होता, लेकिन स्वस्थ दूरी बना लें और अपने मानसिक शांति को प्राथमिकता दीजिए और सीमाएं तय कीजिए, है ना.
1: बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. और इसी तरह कुछ आदतें भी हमारी जीवन में जो है वो टॉक्सिसिटी का काम करती है. हर समय अपनी तुलना दूसरों से ना करें, सोशल मीडिया पे ना रहें. और सबसे महत्वपूर्ण है हमारे विचार. कई बार हमारा सबसे बड़ा आलोचक कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं होते हैं. मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, मेरे बस की बात नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये सब विचार हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं. जब भी ऐसे विचार आए उन्हें चुनौती दीजिए, अपने आप से वही बातें कीजिए जो अपने किसी प्रिय मित्र से करते हैं.
0: जी बिल्कुल. एक बात याद रखिए कि बगीचे में जो है स्वस्थ पौधे उगाने के लिए उसके लिए नए बीज लगाना पड़ता है, खरपतवार हटानी पड़ती है. तो जो जीवन में खुशियां बढ़ाने के लिए अच्छी चीजें जोड़नी पड़ती हैं. और साथ ही ये भी सोचिए कि स्पर्धा जो है वो अपने आप से करें, अपने आलोचक खुद बनिए. और जो दूसरे अगर कभी आलोचना करें तो उसे भी स्वस्थ आलोचना मानकर अपने में सुधार करने की जरूर कोशिश करें. क्यों मंजुला?
1: बिल्कुल सही. तो आइए छोटा सा संकल्प लें कि ऐसी आदतों से हम दूरी बनाएंगे और पॉजिटिविटी जो है, सकारात्मकता, वो हमेशा बना के रखेंगे.
0: जी

0: अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म तीन देवियां से, खूबसूरत सा गीत।
1: और यहाँ तीन देवियां हैं और स्टूडियो में दो देवियां हैं।
0: बिल्कुल सही। और अभी इन देवी को एक और मेल आया है हमारे पास। वंदना जी लिख रही हैं, संदेश आया है उनका न्यू दिल्ली से कि उनको रणथंभौर नेशनल पार्क जाने की बहुत इच्छा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, आपकी इच्छा पूरी हो बहुत ही जल्द। और ये मेरा भी फेवरेट है, तो भारत के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है जहाँ बाघों को उनके प्राकृतिक आवास देखने में रोमांच मिलता है।
1: जी, वहाँ पर देखिए बाघ तो है ही, साथ में सांभर, चीतल और नीलगाय भी हैं। और भाई सफारी का जो रोमांच है वो तो भाई जीप और कैंटर सफारी के दौरान जंगल, झीलों और वन्य जीवों को करीब से देखने का मौका मिलता है। जो किला है ना रणथंभौर किला, वो यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। मंजुला, बहुत खूबसूरत जगह है रणथंभौर। और फोटोग्राफी का तो क्या कहने भाई, मजेदार फोटोग्राफी, प्रकृति का आनंद।
0: और टाइम आपके लिए सबसे अच्छा अक्टूबर से लेके फरवरी तक रहेगा, क्योंकि उस वक्त ठंड में जाइएगा तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी।
1: जी बिल्कुल, जब जंगल की खामोशी में बाघ की हाट सुनाई दे तब समझो रणथंभौर ने अपना असली जादू दिखाया है ना। तो वो किस्मत वाले होते हैं जो जिनको वहाँ बाघ देखने का अवसर मिले।
0: बिल्कुल, तो चलिए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और अब बात कुछ ब्यूटी की। सौंदर्य का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं होता है दोस्तों, बल्कि स्वस्थ रहना भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार हमारी पसंदीदा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो त्वचा, बालों और स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं।
1: जी आइए जानते हैं कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मौजूद कुछ आम जो टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हें पहचानने के आसान तरीके क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पैराबीन्स की। ये प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उत्पाद लंबे समय तक खराब ना हो। लेबल पर मिथाइल पैराबीन और प्रोपाइल पैराबीन जैसे नाम दिखे दोस्तों शैम्पू में, तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए।
0: और दूसरा है सल्फेट्स। ये शैम्पू और फेस वॉश में झाग बनाने के लिए डाले जाते हैं। सोडियम लॉरेल सल्फेट यानी SLS संवेदनशील त्वचा को रूखा बना सकते हैं। और तीसरा नाम है जो नाम नहीं है बल्कि उस पर लिखा होगा अगर आपके बॉटल्स पे आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और आर्टिफिशियल कलर्स। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि फ्रेग्रेंस, परफ्यूम या आर्टिफिशियल कलर जैसे साधारण शब्दों के पीछे दर्जनों केमिकल्स छिपे हो सकते हैं, इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाले उत्पादों को सोच समझ के चुनना चाहिए।
1: जी, जो भी खरीदे पढ़ें जरूर कि क्या उसमें है, मौजूद चीजें क्या है। एक और ऐसी चीज है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो है मिनरल ऑयल या लिक्विड पैराफिन। ये पेट्रोलियम से प्राप्त एक सस्ता तेल होता है दोस्तों, जिसे कई क्रीम, लोशन और हेयर ऑयल में भी मात्रा बढ़ाने और लागत कम रखने के लिए मिलाया जाता है। इसके अलावा कुछ सिंथेटिक डाइज भी होते हैं, जो भी भाई मैं तो कहूंगी चिंता का विषय ही रहेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है मंजू कि इन्हें पहचाने कैसे।
0: बहुत ही आसान है कि खरीदारी करते समय ब्रांड या विज्ञापन पर नहीं बल्कि जो इंग्रेडिएंट लिस्ट पर ध्यान दें। तो याद रखिए, जागरूक उपभोक्ता बनना ही सबसे बड़ा सौंदर्य मंत्र है। सुंदरता तभी सार्थक है जब उसके साथ

0: स्वास्थ्य और सुरक्षा भी जुड़ी हो।
1: हाँ, और मैं तो ये कहूंगी मंजुला, मेरे साथ परेशानी ये होती है कि चश्मा नहीं होता तो मैं पढ़ ही नहीं पाती इंग्रेडिएंट ज्यादातर। दोस्तों, ये इंग्रेडिएंट बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिखे होते हैं, तो सही तरीका ये होता है कि अपने मोबाइल कैमरा से उसकी फोटो खींच लीजिए और उन्हें एनलार्ज करके पढ़ लीजिए, भाई कहीं इसमें पैराबीन तो नहीं है, सल्फेट तो नहीं है, जो है ये मिनरल ऑयल तो नहीं है, ये सब देखिए, ये सब पढ़ लीजिए। जागरूक उपभोक्ता बनेंगे तो ये सबसे बड़ा सौंदर्य का मंत्र है ना।

0: अभी आप सुन रहे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म है अपना देश। इसी के साथ हमारा आज का सफर यहीं तक। उम्मीद है आपको हमारी आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए। दीजिए मंजुला और
1: रश्मि कुकरेती को इजाजत और स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रूपये का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया की विदेश मंत्री बी बत्तिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज आधा प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

0: हमारे लाइव रेडियो कार्यक्रम जिसका नाम है एक ही फिल्म से। आदाब, सत श्री अकाल, स्वीकार कीजिए आपके अपने दोस्त और होस्ट इस लाइव रेडियो कार्यक्रम की रहना तवर प्यार भरा खुशनुमा नमस्कार। कार्यक्रम शुरू करने से पहले सुनते हैं ये संदेश, फिर शुरू करते हैं अपना ये कार्यक्रम।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
1: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले,
2: पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: तो प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए रैना तवर का, और कार्यक्रम शुरू हो चुका है आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ के इस विशेष फिल्मी कार्यक्रम जिसका नाम है एक ही फिल्म से। और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज के इस आधे घंटे के सफर में हम ले चलेंगे आपको 70 की दशक की एक बेहतरीन लोकप्रिय फिल्म जिसका और जिसकी कहानी, जिसके संवाद, जिसके गीत और उसकी आइकॉनिक किरदारों के लिए जो आज भी आपके दिलों में राज करती है। जी हाँ, खैर बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी फिल्मों की बातें होंगी और उसके साथ आप इस ये 70 की दशक की जो फिल्म की बात कर रही हूँ इसमें देखिए मैं हूँ तो आपको कुछ तो कहना होगा, तो यानी कि मैं आपको दूंगी एक हिंट और आपको पहचानना होगा कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं और इस फिल्म में कौन कौन थे, वो भी हम आपको बता देते हैं, हिंट भी दे देते हैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा इस कार्यक्रम में थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए। जी, इसके साथ एक हिंट ये है कि 1976 में रिलीज हुई थी फिल्म और इसमें जो किरदार थे, जो सुपरस्टार थे, वो मनोज कुमार और खूबसूरत अभिनेत्री हेमा मालिनी जी और दमदार अभिनेता प्राण साहब भी थे। तो टाइप कीजिए फटाफट ipradiodelhi@gmail.com क्योंकि हमें रहेगा आपके मैसेज का इंतजार। जो सबसे पहले हमें मैसेज करके भेजेगा वो हमारा आज का इस कार्यक्रम का फेवरेट श्रोता होगा। फेवरेट हमारे आप सभी हैं, मगर जो सबसे पहले भेजेगा वो जो गेस करके हमें बताएगा तो मजा आएगा, है ना। तो चलिए जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में आपके साथ ipradiodelhi@gmail.com। जल्दी से टाइप कीजिए, अपना जवाब भेजिए, हमें रहेगा आपके जवाब का इंतजार। और हम सुनते हैं उसी से जुड़ा ये वाला गीत।
5: यो यो,
6: मेरा पेट्रोल पंप, ये टैंकी खाली है, भर दो ना इसे।
7: ये लो बॉटल और भर दो सबके ग्लास।
5: ये माल चलेगा नंबरी सेठ, रानी छाप है।
6: रानी छाप हो या राजा छाप, यारों को चालू माल नहीं चलता।
5: तो फिर क्या दारू के अड्डे पे झक मारने के लिए आया है?
6: यारों के मुंह मत लग लौंडिया।
0: देखा कितनी सारी बातें हो रही हैं और आप हमें मैसेज करके भेज रहे हैं, हमें फटाफट से गेस कीजिएगा और बताइएगा कि क्या हम किसकी बातें कर रहे हैं, कौन सा गीत है, कौन सा गाना है। और हम इंतजार कर रहे हैं आपके मैसेजेस का ipradio@delhi.gmail.com पर फटाफट से हमें मैसेज करके जवाब दीजिए कि किस फिल्म की हम आज बात कर रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ रहना तवर और कार्यक्रम है एक ही फिल्म से।
6: अरे तेरे प्रेमी तो इधर है, हम अरे हमें पिला प्रेम से जितनी पिलानी हो।

हाँ, प्रेम करो बड़ा बुरा। और ये जो गाना था, ये जो गीत है श्रोताओं, अभी आपने जो सुना, ये है लता मंगेशकर की आवाज का खूबसूरत नगमा। तो बहुत सारे जो मैसेज हमें आ रहे हैं, सबसे पहले जिसने हमें ये सही जवाब दिया मैसेज करके, वो हमारे आज के फेवरेट श्रोता कौन है? जवाब है जी डीबी दाना नेहरू, बिहार से, दिल्ली से। उन्होंने हमें मैसेज किया और एकदम सही बताया कि हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है दस नंबरी। जी हाँ, दस नंबरी। और सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत बधाई देंगे और सभी श्रोता को निराश बिल्कुल ना हुए, क्योंकि सभी हमारे दिल के बेहद करीब हैं। बस ये तो छोटा सा बहाना है, आपसे कुछ तो करवाना है ना, रहना है तो कुछ तो कहना है। तो श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं 1976 में रिलीज हुई एक लोकप्रिय बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म दस नंबरी की, जिसे मदन मोहल्ला द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया। लेकिन कहा जाता है कि इस फिल्म के कई हिस्सों में मनोज कुमार साहब ने ही खुद निर्देशित किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फिल्म का नाम दस नंबरी उस समय काफी चर्चा में रहा? पुलिस की भाषा में दस नंबरी उस अपराध को कहा जाता है जिसका रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में यानी कि दस नंबर पे रखा जाता है। और इस फिल्म में मनोज कुमार का किरदार इसी टैग के साथ बड़ा होता है और अंडरवर्ल्ड का नाम डॉन बन जाता है।

सारे मैसेजेस हमें आ रहे हैं, इस तरह से जुड़े रहिएगा ipradiodelhi@gmail.com. आप सुनते रहें आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, तो मैं हूँ आपके साथ रहना तवर. और बहुत सारे मैसेज, बिट्टू गंगनेजा, पूनम गंगनेजा जी का हमें मैसेज आया है, राधेश्याम देवांगन, देवांगन जी का, जगदीश देवांगन जी का, चंपा जी का, इंदिरापुर नगर भवन पुर से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अविराज जी का भी, स्वर्ण सिंह जी का, अजीत भावसर का भी,

जी हाँ, दुनिया एक नंबरी और मैं 10 नंबरी। वाह, इस फिल्म के कई दृश्य उत्तर भारत की खूबसूरत लोकेशन पर फिल्माए गए। हालांकि उस दौर में तकनीकी सुविधाएं कम थी, फिर भी फिल्म के दृश्य और एक्शन सीक्वेंस दर्शकों को बहुत पसंद आए। मनोज कुमार ज्यादातर देशभक्ति फिल्मों में किरदार निभाते थे, जिसके वजह से वो भारत कुमार के नाम से ज्यादा जाने जाते थे। इस फिल्म में निभाया किरदार बिल्कुल विपरीत था। लेकिन कहते हैं ना, किरदार कितना भी अलग क्यों ना हो, लेकिन अगर अदाकार अच्छे हों, किरदार निभाने वाले अच्छे हों, तो वो दिल पे छाप छोड़ ही जाते हैं, जैसी मनोज कुमार साहब ने इस फिल्म में छोड़ दिया, यानी कि दर्शकों का मन मोह लिया। और हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए, जैसे कि छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश सिंह प्रिंस वर्मा निखिल यशस्वी जी का हमें मैसेज आया है, और उसके बाद सुनील पाठक जी का मैसेज आया है। हमारे पास कमल पाठक गायक मल्होत्रा अनारकली बाजार पंजाब से हमारे पास मैसेज आ रहे हैं। और नमस्कार जी, अनिल मोहन जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार आपको भी, और शानदार प्रस्तुति, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से इन्होंने हमें मैसेज किया है। और संगीत सुहानी इनके नवाब खान से का भी मैसेज आया, वार्ली मुंबई से नवाब जी का, इशरत जी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमें मैसेज करते रहिए और सुनते रहिए हमारा ये प्रोग्राम, जो कि है एक ही फिल्म से ही।

रे भाई ओही हमारी जात। ना तुम हो यार आलू

0: बहुत सारे मैसेज हमें आए बागपत से, उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन और अपार जी का मैसेज आया। जिन जिनके मैसेज अगर आ रहे हैं और मैं नाम ना पढ़ पाऊं तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा, अगली बार जरूर शामिल करूंगी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला जी का हमें मैसेज आया है, हीरामणि जी का मैसेज आया है हमें। उसी तरीके से हमारे पास नागर कोहला जिला राजरा नंदा छत्तीसगढ़ से बबलू जामुन प्रेम पूजा दिश्यंत प्रांजल समीक्षा बेबी आराध्या का मैसेज आया है, और इसी तरीके से हमारे पास नवाब खान जी का मैसेज आया है, और इश्तेहाब सागिर का जो मैसेज आया है हमें वारली मुंबई से, बहुत सारे मैसेज आए हैं हमें। और इसी तरीके से आपने प्यार हमें भेजा, मसरूर हसन जी का मैसेज हमें आ रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। संदीप मक्कर जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, अजीत भास्कर जी, प्रकाश वर्मा जी का, और इसी तरीके से संदीप मक्कर जी का मैसेज, भागवत वर्मा जी का, शांति लीलावती विनीता रुद्र वर्मा और संतोष खाड़से का मैसेज हमें आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस तरह से सोमदत्त जी का भी बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए हमारे पास। और हम इस फिल्म में बात कर रहे हैं 10 नंबरी के बारे में, तो प्राण साहब ने इस फिल्म में जो किरदार निभाया है वो पूरी फिल्म में कहते ना कि एक अलग ही जान उन्होंने डाल दी, और उन्होंने इस फिल्म में दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए कई अलग अलग रूप और वेशभूषाएं बदली, जिसे दर्शकों ने बहुत ही पसंद किया। और लगभग 1 करोड़ का बजट में ये बनी फिल्म बॉक्स ऑफिस में करीब 4.5 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई थी, और देखिए 1976 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक ये फिल्म रही।
1: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है।
2: अच्छा।
1: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
2: बाप रे,

मैसेज हमें आए स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप गुरनूर, अविराज और इसी तरीके से एके फिल्म से बबलेश पवार के इसी मैसेज हमें बहुत मैसेज आए हैं और इसी तरीके से देव शंकर जी तमोरिया का मैसेज आया है, अजीत भास्कर का, अनिल मोहन जी का बहुत बहुत शुक्रिया, नरेंद्र दर्क सुथकर का जी का मैसेज आया है, हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेत सुथार मनोज जी का भी मैसेज हमें आया है और संजय ढिंगिया जी का, उषा मोहन जी का, धर्मेंद्र छिप्पा जी का, रोशन देवगंज, धर्मेंद्र छिप्पा, संतोष जी, स्वर्ण सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेज आने का। इसी तरीके से हिरमानी वर्मा जी, हीरामणि जी का, और इसी तरह से हमें प्रोग्राम में अपने प्रतिक्रियाएं भेजते रहिएगा और हमें याद कीजिएगा, क्योंकि तो दोस्तों समय बहुत कम रह गया है, तो जाते जाते बस यही कहूंगी कि आप सुनते रहें आपका अपना ये कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और इस कार्यक्रम को मैं लेती हूँ यही समाप्ति। कुछ करें ऐसा जो दूसरों के चेहरे पे दे मुस्कुराहट और आपके दिल को दे सुकून, और जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगी एक सभ्य और नेक नागरिक बने, कैसे कि अगर कहीं मेट्रो में आप जा रहे हैं तो सीट बुजुर्गों को जरूर दें और जो जरूरतमंद है उनको जरूर दें। तो रैना तंवर को लेती है इस कार्यक्रम से इजाजत, फिर मिलेंगे नई फिल्म नए गीत के साथ, और मुस्कुराते रहें, खुश रहें, गम बहुत है जमाने में यारो, ये गम बहुत है जमाने में यारो, खुश रहना एक बहाना ही है, एक बहाना ही है खुश रहने के लिए, काफी है दोस्तों। तो सुनते रहें आपका अपना आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त।

0: कार्यक्रम एक ही फिल्म से, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और अब समय हुआ है हमारे पंजाबी उर्दू और इंग्लिश हिंदी समाचारों का।
1: उर्दू खबर सुनोगे।
0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है।

0: समिति के मुशीर और वफूद के सरबरा आज दुनिया को दरपेश गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजों के मौजू पर तबादलाए ख्याल करेंगे। वो उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात के ताल्लुक से नई टेक्नोलॉजियों के रोल के साथ साथ कौमी सिक्योरिटी चैलेंजों की तेजी के साथ बदलती हुई नौयत पर भी गौर व खोज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीर और वफूद के सरबरा दहशतगर्दी से निमटने और सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रिक्स के मुश्तरका वर्किंग ग्रुपों की हालिया मीटिंगों के नतीजों का जायजा भी लेंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मवासलाती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मामला भी जेरे गौर आया था। दिल्ली से रिशु जायसवाल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग के बैन अल-अक़वामी दिन की अजीम कामयाबी इस हकीकत की अक्कासी करती है कि योग से न सिर्फ दुनिया भर में करोड़ों लोगों को जिस्मानी तंदुरुस्ती बरकरार रखने में मदद मिल रही है, बल्कि इससे उन्हें एतमाद के साथ मुस्बत जिंदगी जीने की तरगीब भी हासिल हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत सुभाषितम शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि योग जहन को पूरी तरह सुकून और तस्कीन देने का अहम वसीला है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया कबीले के अरकान से मुलाकात की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके रोल को सराहा और कहा कि मकामी बिरादरियों की सरगर्म शमूलियत चीतों को महफूज रखने के प्रोग्राम की कामयाबी में अहम रोल अदा कर रही है। इससे कबल सदर जमहूरिया कूनो नेशनल पार्क में एक सफारी पर गई और चीतों की बहाली के प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया। मुतालिका एहलकारों ने सदर जमहूरिया को बताया कि सदर दस भारत में 52 चीते हैं और उनमें से 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं। 3 चीतों को जंगली जानवरों की गांधी सागर पनाहगाह में मुंतकिल किया गया है। प्रोजेक्ट चीते का आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2022 में किया था। उस वक्त नामीबिया से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाकर छोड़ा गया था। इसके बाद जनूबी अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते वहां लाए गए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर दो मुल्कों के सरकारी दौरे के पहले मरहले में मंगोलिया पहुंच गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो भारत और मंगोलिया के दरमियान खुसूसी साझेदारी को आगे बढ़ाने की खातिर मुफीद तबादला ख्याल और बातचीत के मुंतजर हैं। अपने इस दौरे में वजीर खारजा मंगोलिया के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और अपने हमनसब के साथ बातचीत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर अपने दौरे के दूसरे मरहले में बुध को 2 दिन के दौरे पर जनूबी कोरिया जाएंगे। वो अपने हम मनसब चो ह्यून के साथ तबादला ख्याल करेंगे और जुमेरात को जेजू के मकाम पर अमन खुशहाली से मुतालिक जेजू फोरम में कलीदी खिताब करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने मशहूर मारूफ जरई साइंसदान और पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता सरदारा सिंह जोहल से आज लुधियाना में मुलाकात की और पंजाब के जरई बहरान पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के बाद जनाब नबीन ने कहा कि एक ऐसी शख्सियत से बातचीत उनके लिए बायस इफ्तिखार है जिसने ज़राअत के शोबे में गैर मामूली ताउन किया। उन्होंने कहा कि जनाब सरदारा सिंह के साथ बातचीत के दौरान उन्हें ज़रई मामलात पर अहम मालूमात हासिल हुई और उन्हें एतमाद है कि उनके नजरियात और मशवरे मुल्क के लिए सूदमंद साबित होंगे।
2: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
1: इत्तेहाद नशरियात और पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर ममलुकत डॉक्टर एल मुरुगन आज मध्य प्रदेश के 2 रोजा दौरे के तहत भोपाल पहुंचेंगे। डॉक्टर मुरुगन आज शाम भोपाल हवाई अड्डे पहुंचेंगे और वहां से वो रियासती गेस्ट हाउस की जानिब रवाना होंगे, जहां वो भोपाल जिला कलेक्टर के साथ एक मीटिंग करेंगे। कल वो देवास जिले के कन्नौज तहसील के दोकाकुई गांव जाएंगे, जहां वो एमपीलैड स्कीम के तहत मंजूरशुदा मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह करेंगे। उमूर खारजा से मुतालिक पार्लियामानी कायमा कमेटी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 4 दिन का मुतालियाती दौरा शुरू कर दिया है। इसका मकसद किलीदी सरहदी सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी मामलात का जायजा लेना है। मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर इस कमेटी के चेयरपर्सन हैं। हमारे नवानिगार ने बताया है कि यह कमेटी सरहदी बंदोबस्त और सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सूरतहाल का बरसरे मौका जायजा लेने के लिए इस महीने की 25 तारीख तक जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह का दौरा करेगी। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज आसाम और मेघालय में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

0: उत्तरी हिमालयी मगरबी बंगाल कर्नाटक तेलंगाना गोवा ओडिशा और शिमाल मशरक के हिस्सों में कहीं कहीं कल तक शदीद बारिश की भी पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली पंजाब हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश महाराष्ट्र अंडमान निकोबार जजायर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। आईएमडी के मुताबिक छत्तीसगढ़ मशरकी मध्य प्रदेश मशरकी उत्तर प्रदेश विदर्भ और तेलंगाना में कल तक गर्मी का जोर जारी रहेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज सुबह वैंकूवर में मिस्र ने न्यूजीलैंड को एक के मुकाबले 3 गोल से हराकर वर्ल्ड कप में अपनी अव्वलीन कामयाबी हासिल की है। लिवरपूल के सरकर्दा खिलाड़ी मोहम्मद साहले ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ ही मिस्र की टीम ग्रुप जी में सरफहरिस्त आ गई है। इससे कबल आज फ्लोरिडा में ग्रुप एच के एक मैच में केप वर्ड और यूरुग्वे का मुकाबला 2-2 गोल से बराबरी पर खत्म हुआ। आज के मैचों में ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल में बीजेपी सरकार ने अपना पहला मुकम्मल बजट पेश किया है जिसमें समाजी बहबूद बुनियादी ढांचे के फरोग और रोजगार पर तवज्जो मरकूज की गई है। खवातीन के लिए मखसूस कई स्कीमों का ऐलान भी किया गया है। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है जिसमें उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खारजा एस जयशंकर मंगोलिया के अपने हममनसब के साथ इक्तसादी राबतों को मजीद मुस्तहकम बनाने के मामले पर बातचीत करने वाले हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज आसाम और मेघालय में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर वर्ल्ड कप में अव्वलीन कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. BJP government in West Bengal presents first full budget focusing on social welfare, infrastructure development and employment, announces a slew of women-centric schemes. BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss emerging security challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar arrives in Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. In a major employment and welfare push, the BJP-led West Bengal government today presented its first full budget 2026-27, focusing on social welfare, infrastructure development and employment, and also announced a slew of women-centric schemes. Presented today by Finance Minister Swapan Dasgupta, has announced the recruitment for 1 lakh vacant posts across various state departments. 33% of these new positions will be reserved for women. We have a detailed report from our Kolkata correspondent.
2: The government proposed a 20% hike in DNS allowance for government and semi-government employees, teachers and teaching staff. Pensioners will also benefit from this increase, which will take effect from 1st October. Presenting a deficit budget of 6,070 crore, Finance Minister Swapan Dasgupta called it a roadmap for building a developed Bengal. He also revealed that the state's debt now stands at over 8 lakh crore rupees, making financial discipline a major challenge. The budget includes recruitment for 1 lakh vacant posts, 20,000 in the police force and 50,000 teachers. 33% of these jobs will be reserved for women, with an additional 10% reserved for Agniveers. Key allocations include rupees 36,000 crore for the Annapurna Yojana, over rupees 8,500 crore for agriculture, rupees 8,000 crore for food and supplies, rupees 7,000 crore for higher education, and nearly rupees 18,000 crore for home and health affairs. The government also announced salary hikes for para teachers, civic volunteers, and village police. Anganwadi and Asha workers will receive an additional rupees 5,000 monthly honorarium, while midday meal cooks will get rupees 1,000 more. Further measures include setting up a

0: held Uruguay to a 2-2 draw in their Group H match in Florida today. Iran and Belgium also played out a goalless draw in their Group G clash in California last night. In today's fixtures, Argentina will take on Austria in Group J. The match will begin at 10:30 p.m. IST. In men's hockey, India defeated the Netherlands 3-2 in their last match of FIH Pro League Rotterdam leg yesterday. Jugraj Singh, Abhishek and Rajinder Singh scored the goals, helping India register their second win of the leg against the Dutch side. Stand-in captain Hardik Singh was named player of the match for his leadership and strong midfield performance. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 375 points to 77,178, while the Nifty advanced 108 points to 24,121 when reports last came in. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index added 0.3%, while the small-cap 100 index was trading 0.5% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BJP government in West Bengal presents first full budget focusing on social welfare, infrastructure development and employment, announces a slew of women-centric schemes. BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss emerging security challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrives in Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू, उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर मंगोलिया पहुंचे, आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिसकर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में दो प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000

0: रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता के साथ काशपिन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, BJD और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज CISF के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि CISF के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री B.Batsisak के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है।

0: मंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रूपये का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदार सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ. मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई

मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं, जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, 684 किलोहर्ट्ज़ FM 100.1 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेश खिदमत है एनसीईआरटी का स्पॉन्सर प्रोग्राम

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से दियोशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए।

हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं, इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह।

अब प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है। सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
1: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
0: अब वो भालू का बच्चा वहाँ के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
1: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
0: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
1: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
0: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
1: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
0: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधी

0: या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
1: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
0: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
1: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
0: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: मालवा के गौरवशाली अतीत की साक्षी, साहित्य संस्कृति की प्राचीन परंपरा को अपनी गोद में संजोए विक्रमादित्य के विक्रम की शौर्य स्थली और कालिदास की कविता भूमि। मेरे आंचल से प्रवाहित क्षिप्रा नदी ने संस्कृति और आध्यात्म की वो धारा प्रवाहित की जिसके स्मरण भरते ही मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है।
1: सामीन आदाब, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सपहर के 3 बजे हैं, हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। सामिन, आपको बता दें कुछ देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे कहकशा प्रोग्राम के तहत किस्मत फिल्म की कहानी और नगमे, जिसे तरतीब दिया है जनाब मोहम्मद नसीम खान ने। 4 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामिन, ये था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 में है खबरें नशर होंगी।
1: अब आप अर्जुमंद अली खान से खबरें सुनिए। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है, जिसमें उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खारजा एस जयशंकर मंगोलिया के अपने हम मनसब के साथ इक्तसादी राबतों को मजीद मुस्तहकम बनाने के मामले पर बातचीत करने वाले हैं। कतर में कुदरती गैस की बरामद से मुतालिक बुनियादी ढांचे के अहम मरकज में धमाका होने से 54 अफराद जख्मी हो गए हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर वर्ल्ड कप में अव्वलीन कामयाबी हासिल की है। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की 2 रोजा मीटिंग आज से नई दिल्ली में हो रही है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। इसमें ब्रिक्स के 11 मेंबर मुल्कों के सिक्योरिटी सरबराह शिरकत कर रहे हैं। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहदा अरब अमारात शामिल हैं। इस मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीर और वफूद के सरबराह आज दुनिया को दरपेश गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजों के मौजू पर तबादला ख्याल करेंगे। वो उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात के ताल्लुक से नई टेक्नोलॉजियों के रोल के साथ साथ कौमी सिक्योरिटी चैलेंजों की तेजी के साथ बदलती हुई नौयत पर भी गौर खोज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीर और वफूद के सरबराह दहशतगर्दी से निमटने और सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रिक्स के मुश्तरका वर्किंग ग्रुपों की हालिया मीटिंगों के नतीजों का जायजा भी लेंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मवासलाती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मामला भी जेर गौर आया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग के बैनुल अक़वामी दिन की अजीम कामयाबी इस हकीकत की अक्कासी करती है कि योग से न सिर्फ दुनिया भर में करोड़ों लोगों को जिस्मानी तंदुरुस्ती बरकरार रखने में मदद मिल रही है, बल्कि इससे उन्हें एतमाद के साथ मुस्बत जिंदगी जीने की तरगीब भी हासिल हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत सुभाषितम शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि योग जहन को पूरी तरह सुकून और तस्कीन देने का अहम वसीला है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया कबीले के अरकान से मुलाकात की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके रोल को सराहा और कहा कि मकामी बिरादरियों की सरगर्म शमूलियत चीतों को महफूज रखने के प्रोग्राम की कामयाबी में अहम रोल अदा कर रही है। इससे कबल सदर जमहूरिया कूनो नेशनल पार्क में एक सफारी पर गई और चीतों की बहाली के प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया। मुतालिका एहलकारों ने सदर जमहूरिया को बताया कि सरदस भारत में 52 चीते हैं और इनमें से 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं। 3 चीतों को जंगली जानवरों की गांधी सागर पनागाह में मुंतकिल किया गया है। प्रोजेक्ट चीता का आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2022 में किया था। उस वक्त नामीबिया से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाकर छोड़ा गया था।

शेख खुशहाल और सोनू निगम की आवाजों में आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का लिखा है गीत, जिसे मौसीकी सजाया था नू मलिक ने। फिल्म थी मैं हूं ना। इस नगमे के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत प्रोग्राम कहकशां। आज इस प्रोग्राम में सुनिए किस्मत फिल्म की कहानी और नगमे, जिसे तरतीब दिया है जनाब मोहम्मद नसीम खान ने।

अदाकार अशोक कुमार एक खूबरू नौजवान है। चोरी चकारी फरेब धोखाबाजी उसका महबूब मशगला है। आज 2 साल की सजा पूरी करके वो जेल से रिहा हुआ है, लेकिन उसके माथे पर कोई शिकन नहीं है और मुस्कुराहट उसके लबों पर खेल रही है। जेल से बाहर आकर सबसे पहले उसने बांके नामी एक शख्स की जेब काटी और उसके हाथ लगा एक बटुआ जिसमें एक घड़ी थी। दरअसल बांके भी एक जेब कतरा था और उसने भी किसी बूढ़े शख्स की जेब काटी थी। घड़ी बेचने की गरज से जब शेखर एक खुश मिजाज दुकानदार डेविड यानी अदाकार डेविड की दुकान पर पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात बांके से हुई और उसे इल्म हो गया कि शेखर उससे भी बड़ा फरेबी है। खैर, डेविड की मदाखलत की वजह से शेखर और बांके ने घड़ी बेचकर रकम को आधा आधा बांटने का इरादा कर लिया, लेकिन ऐन वक्त पर वो बूढ़ा शख्स भी वहां आ पहुंचा जिसकी घड़ी चोरी हुई थी। उसने डेविड को अपनी रुदात सुनाई। शेखर भी उनकी बातें सुन रहा था। इसी दौरान शेखर को अंदाजा हुआ कि ये बूढ़ा शख्स उसी थिएटर में प्रोग्राम देखने जा रहा है जहां वो खुद जाने वाला है, तो वो उस शख्स को अपने साथ थिएटर में ले गया जहां उस शख्स की बेटी रानी यानी अदाकारा मुमताज शांति ने एक खूबसूरत आइटम पेश किया।

दौरान इस बूढ़े ने शेखर को बताया कि एक जमाना था वो इस थिएटर का मालिक हुआ करता था, मगर हालात ने ऐसी करवट ली थी कि आज उसका नौकर रंजीत यानी अदाकार मुबारक इस थिएटर का मालिक बन बैठा है। मजीद उसने बताया कि जब रानी बच्ची थी तो वो उसे इस कदर लजाया करता था कि वो थककर चूर हो जाया करती थी, लेकिन वो रानी के थकने की परवाह भी नहीं करता था। नतीजा ये हुआ कि रानी की एक टांग खराब हो गई और वो लंगड़ाकर चलने लगी। यही वजह थी कि वो अपनी बेटी से शर्मिंदा था और काफी अरसे से रानी और उसकी छोटी बहन लैला यानी अदाकारा स्नेहलता से अलहदगी अख्तियार करके गुमनाम से जिंदगी गुजार रहा था। शो के दौरान रानी अपने वालिद को तमाशबीन में देख चुकी थी। जैसे ही शो खत्म हुआ रानी ने चाहा कि वो अपने वालिद से मुलाकात करे, लेकिन तब तक वो वहां से गायब हो चुके थे। रानी ने शेखर से अपने वालिद के बारे में पूछा, मगर वो उसकी कोई मदद न कर सका। रानी शेखर को अपने वालिद का दोस्त समझ बैठी थी। एक दिन शेखर ने थिएटर के मालिक रंजीत की बीवी का बेशकीमत हार गायब कर दिया। पुलिस को उस पर शक हो गया। पुलिस की जद से बचते

किसी की इंतजारी में मेरी लहला को बादल तुम जर

सुबह हुई तो दरवाजे पर मकान मालिक के मुंशी ने दरवाजे पर दस्तक दी। शेखर ने दरवाजा खोला, इसी दौरान रानी भी आ गई। मुंशी ने अपने कर्जे का तकाजा किया। रानी ने उसे यकीन दिलाया कि वो बहुत जल्द कर्जा अदा कर देगी। मुंशी ने रानी को एक हफ्ते में कर्जा अदा करने की वार्निंग दी और वापस चला गया। शेखर को अंदाजा हुआ कि रानी बड़ी कशमकश की जिंदगी गुजार रही है। उसने रानी के रूबरू उसी के मकान में किराएदार की हैसियत से रहने की पेशकश रखी, जिसे बिलाखिर रानी ने कबूल कर लिया। इस बहाने से शेखर ने रानी की मदद करना शुरू कर दी। उधर रंजीत की बीवी के कीमती हार की चोरी के सिलसिले में तहकीकात कर रहे इंस्पेक्टर यानी अदाकार शाहनवाज ने उनके घर जाकर इत्तला दी कि पुलिस अभी तक हार के चोर का सुराग लगाने में नाकाम है। इसी दौरान इंस्पेक्टर की निगाह मेज पर गई, जहां एक थाली में खाना सजा हुआ था।

से खाने वाला कोई मौजूद न नजर आया। इंस्पेक्टर ने इसकी वजह मालूम की थी तो उसे मिसेज रंजीत से पता चला कि उनके दो बेटे हैं मोहन और मदन, जिसमें से मोहन यानी अदाकार कनू रॉय उनके साथ है, जबकि दूसरा बेटा मदन बचपन में नाराज होकर घर से फरार हो गया था और आज तक लापता है। लेकिन फिर भी दिल न जाने क्यों कहता है कि एक दिन मदन जरूर वापस आएगा। एक दिन शेखर को पता चला कि रंजीत का बेटा मोहन लैला से शादी करना चाहता है और लैला बहुत जल्द शादी से पहले ही माँ बन जाएगी। उधर मुंशी ने मकान को नीलाम करने की धमकी दी। शेखर ने हाथ की सफाई दिखाई और बड़ी चालाकी से मुंशी जी की जेब काटकर अच्छी खासी रकम उड़ा ली। मुंशी जी को शेखर पर शक तो था, लेकिन सबूत कोई मौजूद न

शेखर ने रानी का कर्ज चुका दिया। रानी ने शेखर का शुक्रिया अदा किया और उसके दिल में शेखर के लिए एक नरम जज्बा पैदा हो गया। शेखर भी दिल ही दिल में रानी से मोहब्बत करता था, मगर उसने अभी तक अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। शेखर ने रानी से वादा किया कि वो उसके पैर का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराएगा। एक रोज शेखर ने रानी के एक पुराने फोटोग्राफ में उसे वही हार पहने हुए देखा जो कुछ अरसे पहले उसने रंजीत की बीवी के गले से चुराकर डेविड को बेचा था। अगले ही रोज वो डेविड की दुकान पर पहुंचा और वो हार वापस अपने कब्जे में ले लिया और कुछ घंटों बाद ही वो हार रानी के गले में था। दरअसल ये हार रानी का ही था, मगर हालात बदतर हो जाने की वजह से रंजीत ने उसे बेच दिया था। अब शेखर ने रंजीत की तिजोरी साफ करने का मंसूबा बनाया। वो चाहता था कि अगर उसके पास 2000 रुपए की रकम हो तो किसी अच्छे डॉक्टर से रानी के पांव का ऑपरेशन करा सकेगा। शेखर के मंसूबे के मुताबिक बांके ने रंजीत के यहाँ नौकरी कर ली। बांके ने तिजोरी का नंबर हासिल करके शेखर को दे दिया। शेखर ने तिजोरी तो खोल ली, लेकिन न जाने क्यों आज उसका जमीर उसे गलत काम करने से मना कर रहा था और इसकी वजह थी रानी से उसकी मोहब्बत। उधर रानी शेखर की जानिब से पेश किए गए बेश कीमत हार को पहनकर थिएटर पहुंची, जबकि शेखर ने उसे मना किया था कि वो हार पहनकर घर से बाहर ना जाए। आखिर वही हुआ जिसका डर था। रंजीत ने जब वो हार रानी के गले में देखा तो फौरन पुलिस को फोन कर दिया। इंस्पेक्टर ने रानी से इंक्वायरी की और उसे गिरफ्तार करने का इरादा किया, लेकिन इससे पहले शेखर वहां पहुंच गया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जिस वक्त पुलिस की जीप उसे ले जा रही थी, वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया और चोरी छुपे डेविड के पास पहुंचा और उससे 2000 रुपए का कर्ज मांगा, लेकिन डेविड ने उसे ये रकम नहीं दी। मजबूरन उसे फिर चोरी का सहारा लेना पड़ा। वो बांकी की मदद से रंजीत की तिजोरी से 2000 रुपए ले गया और डॉक्टर से दरखास्त की कि वो रानी को हरगिज न बताए कि ये रकम शेखर ने अदा की है। इधर मोहन को एक जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। मोहन के जाने के बाद रानी को भी पता लग गया कि लैला मोहन के बच्चे की मां बनने वाली है। वो बहुत परेशान हो गई और नाउमीदी का दामन उसने थाम लिया। उधर मोहन की मां ने एक दिन मौका पाकर रंजीत के रूबरू लैला और मोहन की शादी की बात रखी तो रंजीत ने पहले इस शादी से साफ इनकार कर दिया,

लेकिन बाद में 10,000 रुपए की रकम बतौर जहेज मांगी। लैला को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो जबरदस्त जहनी कशमकश का शिकार हो गई और उदासी के बादल उसके दिलो दिमाग पर छा गए।

उम्मीदी ने लैला को खुदकुशी का रास्ता अपनाने पर मजबूर किया, लेकिन ऐन वक्त पर उसके वालिद ने उसे खुदकुशी करने से रोक लिया। उधर जब मोहन वापस लौटा तो उसे सारी हकीकत का इल्म हुआ। लैला को लेकर रंजीत और मोहन में तीखी तकरार हुई और बिलाखिर मोहन ने घर छोड़ दिया। रंजीत के घर से जो रकम शेखर ने चोरी की थी, उसी सिलसिले में इंस्पेक्टर ने रंजीत के ठिकाने पर छापा मारा। यहां से एक लॉकेट बरामद हुआ। ये लॉकेट रंजीत के बिछड़े हुए बेटे मदन का ही था। रंजीत ने इंस्पेक्टर से कहा कि वो जल्द अज जल्द

नाउमीदी ने लैला को खुदकुशी का रास्ता अपनाने पर मजबूर किया, लेकिन ऐन वक्त पर उसके वालिद ने उसे खुदकुशी करने से रोक लिया। उधर जब मोहन वापस लौटा तो उसे सारी हकीकत का इल्म हुआ। लैला को लेकर रंजीत और मोहन में तीखी तकरार हुई और बिलाखिर मोहन ने घर छोड़ दिया। रंजीत के घर से जो रकम शेखर ने चोरी की थी, उसी सिलसिले में इंस्पेक्टर ने रंजीत के ठिकाने पर छापा मारा। यहां से एक लॉकेट बरामद हुआ। ये लॉकेट रंजीत के बिछड़े हुए बेटे मदन का ही था। रंजीत ने इंस्पेक्टर से कहा कि वो जल्द अज जल्द शेखर का पता लगाए, क्योंकि शायद उसी से पता चल सकता है कि मदन कहां है। इंस्पेक्टर ने रंजीत को राय दी कि वो रानी को दोबारा थिएटर में काम करने पर आमादा कर ले, क्योंकि शेखर कहीं भी हो रानी का प्रोग्राम देखने जरूर आएगा। रंजीत अपनी इस गरज की खातिर रानी से मिला और उसे अच्छी रकम की पेशकश की। रानी ने उसकी पेशकश कबूल तो कर ली,

तब शेखर को रानी के प्रोग्राम का इल्म हुआ तो वो भेस बदलकर थिएटर में पहुंचा, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे पहचान लिया और गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान इंस्पेक्टर की नजर शेखर के हाथ पर खुदे हुए मदन के नाम पर गई। वो ताज्जुब में रह गया। रंजीत की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसकी आंखें नम हो गई। शेखर ने अपने बाप रंजीत से कहा कि मैं एक आवारा चोर हूं और न ही मैं आपका बेटा कहलाने के लायक हूं। रंजीत ने उसे अपने गले से लगा लिया। इसी दौरान रानी वहां आ पहुंची और रंजीत के दस्तखत किए हुए कागजात इंस्पेक्टर साहब के हवाले कर दिए। रानी की सारी शर्तें रंजीत ने तस्लीम कर ली। उसने रानी और लैला को अपने गले से लगा लिया और इस तरह किस्मत ने अपनी मेहरबानियों के दरवाजे शेखर, रानी, लैला और रंजीत वगैरह पर खोल दिए।

सामने भी आप सुन रहे थे कहकशा प्रोग्राम के तहत किस्मत फिल्म की कहानी और नगमे, जिसे तरतीब दिया था जनाब मोहम्मद नसीम खान ने, पेश कर रहे थे एस एम शफीक। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। फिल्म मौसीकी के आज के प्रोग्राम में सामईन हम आपको सुनवाएंगे कुछ ऐसी फिल्मी गजलें जो न सिर्फ अपने जमाने में मशहूर रही बल्कि जिनकी वजह से उन फिल्मों को भी शोहरत हासिल हुई। प्रोग्राम की पहली पेशकश तीन देवियां फिल्म का ये नगमा या ये गजल

अनवर की आवाज में आप सुन रहे थे राजेश रोशन की मौसीकी सजाए नगमा फिल्म थी बाहर आने तक। आज के प्रोग्राम की अगली गजल जावेद अख्तर की लिखी हुई जिसे मौसीकी सजाए नू मलिक ने, आवाज अलका याग्निक की है, फिल्म है उमराव जान।

0: की बहुत खूबसूरत, मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत।
1: खयाम की मौसीकी सजी गजल आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म थी शंकर हुसैन। प्रोग्राम की अगली पेशकश आप तमाम सामीन के लिए प्रीति सागर की आवाज में वनराज भाटिया की मौसीकी सजी गजल, फिल्म है मंडी।

मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे मदन मोहन की मौसीकी से जी गजल फिल्म थी अकेली मत जाइयो, कलाम मजरू का था। और सामने लीजिए सुनिए आशा भोसले की आवाज में मुराबजान फिल्म की गजल, कलाम शहरयार का है, मौसीकार हैं खय्याम।

सुन रहे थे लता मंगेशकर के बाज में, फूल मजरू के थे, मौसीकी थी मदन मोहन की। आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आप तमाम सामईन के लिए पाल की फिल्म की ये गजल मोहम्मद रफी की आवाज में, हमारी शकील बदायूं मौसीकार नौशाद।

आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद आजम खान से खबरें सुनिए। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है, जिसमें उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने उलान बतार में मंगोलिया के अपने मनसब के साथ इक्तिसादी राब्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने के मामले पर बातचीत की। कैरी स्ट्रेमर ने बरतानिया के वज़ीर आज़म के ओहदे से अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। कतर में कुदरती गैस की बरामद से मुतालिक बुनियादी ढांचे के अहम मरकज में धमाका होने से 54 अफराद जख्मी हो गए। और फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हरा कर वर्ल्ड कप में अव्वलीन कामयाबी हासिल की है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की दो रोजा मीटिंग आज से नई दिल्ली में हो रही है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। इसमें ब्रिक्स के 11 मेंबर मुल्कों के सिक्योरिटी सरबरा शिरकत कर रहे हैं। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमीरात शामिल हैं। इस मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीर और वफूद के सरबरा आज दुनिया को दरपेश गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजों के मौजू पर तबादला ख्याल करेंगे। वो उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात के ताल्लुक से नई टेक्नोलॉजियों के रोल के साथ साथ कौमी सिक्योरिटी चैलेंजों की तेजी के साथ बढ़ती हुई नौीयत पर भी गौर खोज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीर और वफूद के सरबरा दहशतगर्दी से निपटने और सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रिक्स के मुश्तरक वर्किंग ग्रुप की हालिया मीटिंगों के नतीजों का जायजा भी लेंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मवासलाती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मामला भी जेर गौर आया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक मजबूत समुद्री सलाहियत किसी मुल्क के इक्तिसादी और दिफाई तौर पर मौसर होने का फैसला कुन उनसर होती है और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री सलाहियतों का आमिल कोई मुल्क मजबूत होता है और इक्तिसादी और दिफाई तौर पर ज्यादा मौसर होता है। वज़ीर आज़म ने राजधानी मुल्क में तैयार किए गए जंगी जहाज, देवनागरी जायजा लेने वाले जहाज संतोषधक और गहरे पानी में सरगर्मी अंजाम देने वाले आब्दुशिकन बहरी जहाज अगले को कल बहरिया में शामिल करते हुए कही। इन जहाजों को बहरिया के जंगी जहाजों तैयार करने वाले ब्यूरो ने डिजाइन किया है और इनकी तामीर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने की है। इन बहरी जहाजों का मकसद जंगी सरगर्मी मुस्तकम बनाना, समुद्र के जायजे लेना, आब्दुशिकन तैयारियों की कार्रवाई अंजाम देना है। मगरबी बंगाल में बीजेपी सरकार ने अपना पहला मुकम्मल बजट पेश किया, जिसमें समाजी बहबूद, बुनियादी ढांचे के फरोग और रोजगार पर तवज्जो मरकूज की गई। खवातीन के मखसूस कई स्कीमों का ऐलान भी किया गया। रियासत सरकार के मुलाजमीन के महंगाई भत्ते में 20% का इजाफा किया गया है। रियासत के वजीर खजाना स्वपन दास गुप्ता ने शुभेंदु अधिकारी सरकार के पहले बजट में ऐलान किया। इस तरह मजमुई महंगाई भत्ता 38% हो जाएगा। इसका इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। उन्होंने भी कहा कि रियासी सरकार समाजी बहबूद के सभी मौजूदा स्कीमें जारी रखेगी। वजीर खजाना ने यह ऐलान भी किया कि रियासी सरकार के स्कूलों और सरकार के इमदाद से चलने वाले स्कूलों में लड़कियों को 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। जनाब स्वपन दास गुप्ता ने असेंबली में ऐलान भी किया कि सरकार मुख्तलिफ खाली ओहदों के लिए 1 लाख अफराद की भर्ती करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि रियासी सरकार खातून उम्मीदवारों के लिए 33% खाली ओहदे रिजर्व करेगी। रियासत के वजीर खजाना ने MLA के मकामी एरिया तरक्याती फंड को 70 लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रियासती पुलिस फोर्स में 20,000 सीटों पर तकरूरी की जाएगी। शुमाली बंगाल में एम्स अस्पताल और कैंसर अस्पताल कायम किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर अजय शंकर दो मुल्कों के सरकारी दौरे के पहले मरहल में मंगोलिया गए हुए हैं। उन्होंने उलान बतार में मंगोलिया के अपने मनसब से बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस तबादले ख्याल से भारत और मंगोलिया के दरमियान कलीदी साझेदारी की गर्मजोशी, कुवत और मुस्तकबिल के अक्कासी होती है। दोनों रहनुमाओं ने तरक्याती प्रोजेक्टों, सलाही साजी, सकाफत, तालीम, सिक्योरिटी और कसीर मुल्की फोरमों में बाहमी इश्तराक की पेशरफ का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान तरफेन ने कानकनी माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और ज़रई प्रोसेसिंग के शोबों में दस्तियाब मौकों के बारे में बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर अपने दौरे के दूसरे मरहल में बुध को 2 दिन के दौरे पर जुनूबी कोरिया जाएंगे। वो अपने मनसब छोहवांग के साथ तबादला ख्याल करें। जुमेरात को जीजू के मकाम पर अमन और खुशहाली से मुतालिक जीजू फोरम में कलीदी खुतबा पेश करेंगे। मूड़े हादसे से मुतालिक पार्लियामानी कायमा कमेटी ने जम्मू कश्मीर लद्दाख का 4 दिन का मुत

और एक निशानी उनके लिए मुर्दा जमीन है कि हमने इसको जिंदा किया और इसमें से अनाज उगाया, फिर ये इसमें से खाते हैं।

न तो सूरज ही से हो सकता है कि चांद को जा पकड़े, और न रात ही दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं।

पोटेशियम और कैरोटीन की प्रचुर मात्रा होने के कारण छोटे बच्चों के लिए ये एक उत्तम आहार है। गाजर में आंतों के हानिकारक जंतुओं को नष्ट करने का अद्भुत गुण है। इसमें विटामिन ए भी काफी मात्रा में पाया जाता है, अतः नेत्र रोग में भी लाभदायक है गाजर। गाजर रक्त शुद्ध करने वाली है। 10-15 दिन केवल गाजर के रस पर रहने से रक्त विकार, गांठ, सूजन तथा पांडु रोग जैसे त्वचा के रोगों में बहुत लाभ होता है। गाजर में लौह तत्व भी प्रचुरता से पाया जाता है। खूब चबा चबा कर गाजर खाने से दांत मजबूत, स्वच्छ और चमकीले होते हैं तथा मसूड़े मजबूत होते हैं। गाजर के रस का नित्य सेवन करने से मस्तिष्क की कमजोरी दूर होती है। गाजर का सूप दस्त होने पर लाभदायक होता है। अरुचि, अपच आदि रोगों में गाजर के रस में नमक, धनिया, जीरा, काली मिर्च, नींबू का रस डालकर पिए बहुत लाभ होगा। लेकिन ये प्रयोग 2 माह तक अवश्य करें, तभी आपको लाभ दिखाई देगा। पोषक तत्वों के लिहाज से गाजर एक अत्यंत समृद्ध खाद्य पदार्थ है। ध्यान रहे, गाजर को छीलकर या खुरचकर नहीं खाना है, क्योंकि गाजर के पोषक तत्व छिलके के नजदीक ही होते हैं, जो छिलका खुरचने पर बाहर निकल जाने से शरीर को नहीं मिल पाते हैं। गाजर को बिना छीले केवल धोकर साफ करके उसका रस निकालकर पीने से बहुत लाभ होता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो गाजर का रस बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए बहुत उपयोगी है। गाजर चबाने से मुंह में लार ज्यादा बनती है। इससे जरूरी एंजाइम, खनिज पदार्थ और विटामिन मिल जाने से भोजन शीघ्र पच जाता है। यदि भोजन करने के तुरंत बाद एक गाजर धोकर खूब चबाकर खाई जाए तो अन्य लाभों के अलावा मुंह के कीटाणु शीघ्र नष्ट हो जाते हैं तथा दांतों के मध्य छिपे भोजन के कण भी बाहर निकल जाते हैं। इस प्रयोग से दांतों का हिलना, मसूरों से खून आना भी रुकता है। गुर्दों और मूत्राशय को बल प्रदान करने में गाजर का महत्वपूर्ण योगदान है। गाजर का ताजा रस अल्सर और कैंसर जैसे रोगों में कमी लाता है। ये सभी प्रकार के संक्रमण को रोकने में मददगार बनता है। कुछ लोगों को अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है, ऐसे में एक प्रयोग करके देखें। गाजर के रस में पालक का रस और थोड़ा नींबू का रस डालकर पीना चाहिए। इस मामूली से उपाय से कब्ज दूर हो जाता है। गाजर का उपयोग कच्चा खाकर, पकाकर या उबालकर अथवा सूप बनाकर या फिर रस निकालकर किया जा सकता है। इतने सारे लाभ हैं गाजर के। आप भी उपयोग कीजिए और स्वस्थ रहिए।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलान बतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय करडिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 24 inch ka tomato patancha 10 kilo ne jeb lu spana skill pe phul gobi chitancha de saba jebi hisaba tane side tun la mundi ne tapcha pehla khona sna ma mundi lan mat de mundi la ne mundi badal la song ya khama use was de gana phul gobi lan mat de sa pa tomato po jaga lu spade phul gobi khatum chana akhire tomato po khona sa lu spana kho phul jaga thoba phere kho mana grow do ya tomato khurcha na skyancha na sa lu spana टमाटर पो जबरदस्त छात दोनों मल्चिंग फायदा दो छात कि एक तो अता छू कम रोशिन दूसरा को छू कम लुस्पी वाजी का छू कम रोशिन दूसरा ने को नापो प्लास्टिक युत पा फिर सावन छात के लुशिन छात लुस्पा फिर को ग्रोथ पंग मिसाल रुगो वो यों चांग एकदम रुगो मत टमाटर रहा इन्ना बाकी से का तंगन पो बसे एवा 20 15 से 20 दिन स्नास मिनिमम Nas minchas ngatanga faida chat.
1: Bakshi zaji sahib thana daksa ngati yaradar malching bana legina fankhiyo ten chuju. Thana ngati daksa yaradar na ngati yurma bazre ju. Thana ngati swangan bahut sare ngati phaskune anu yungmat. Thana ji swangan kun yani miyung chukpatte feres. Ngatas du laga chuk mithar chik barwa chat.
0: Swangan pe mingna dia malching buenjuya. Ek to dende nakpo dende urdan dende utkan buangmas ke khatum chachin. Ko skechamin. Dusra na ko ate ade zalde tamatar ya फुल गोभी या बन गोभी चीप या जक्सन ने तो गम पे सकते बीन ना या चौक पर तू इस पर खत्म सों वह साइट उन ला चीज के चिंदू वो खत्म साइट उन ला न्यान ना साइट इधे शोल ने का गाजर था मरुषी गाजर ला दो इंदे की गाची गाजर इस साइट ला थुनमोरी का छाना कोई छूचा लेरदान ला सोंसे गाजर पर लंबा छचिन देख ना दे मल्चिंग फायदा दो छचिन की एक तो आता छू मरगोस दूसरा आता चौंगान मस्के ना चौंगान ही हिसाब या दे खर्ची दया दया अर्धन पैंग टमाटर पोया फूल गोभी न ची न लूस लूस पाफेरे दो संगती दिन ना हेल्दी सचिन देखा ना दे वाजी का यहाँ चीचो थी अगर कतो दें लिक्विड फर्टिलाइजर जो अमृत दे दे जो अमृत दर बना बलान शिलां पो 10 केजी तांचा 200 पा बिरल जियां 10 केजी दें 5 से 8 लीटर बलान पिशाब तांचा 2 केजी कोरम दाम मरुशीन 2 केजी बेसन दाम मरुशीन बेसन जरमान दालिफ है दे कना दें चोरबा दो से या नक्सरे पटाखे से आना लूट सरकारी लूट में पिज़ागा चाना मल्टूप दो चोरबा दो दें साइकों से आम रुचि दो स्नातक पितोक खाते कना पूरा स्क्रूगिंग जाता है छूप फुल बच्चा ने स्क्रूगिंग जाता है स्नातक पितोक दे कना दे वो खाते को बोरिक्स को नहीं जा पा रही पूरा टाइट मबा बोरा मस्कुन पिशू संसद जरासीम छाचिन लिहाजा अदू इन दरियाप ना को बारह से पंद्रह दिन ना खोल दान मत दान माना जो छूने अम्बो तांग मरुशी छूने अम्बो मल्चिंग तांसपा दू फायदा दू कि मल्चिंग दे पिशाब पुना दे शिलांग टी वाजी का आ दे मल्चिंग इस्तेमाल नापो प्लास्टिक इस्तेमाल छूने अम्बो तांसपा को गंगा खेत जैसी छूचात पर तैर छिंची तांग मरुशी तांसपा कोई आधे टी वा एड वाम दें चिक सेंट पिस्टिन चौं चिं दे रिंगमो रिंगमो स्टिन चिक दे स्टिन पोस दे प्लास्टिक इस्तेमाल ठुप छाना खोस 24 घंटा लग बची दे 24 घंटा खोस योग तो ने जन लोग ओम पुतिन दूस पा मतलब आज जी थासियर को आदर बना थास को आर गोशिं दे दे को आचियर को सिंदर बना दे ऑक्सीजन चेचुक भी ऑक्सीजन पु दरे दे दिन दास ओम पु पुत खोस पोरेस्ट्री बढ़े बस पा आर दर दर नर ओम 24 घंटा खोस लास बस पा छू योग पे हवा ऑक्सीजन सोंग कोई लास पु हमा दे स्टिन पुस बची अनाता को चाओ बुत गती सुनमा वनमा ना काफी हेल्दी छात छाना दे अदना दे ए दो हम पे फिर फायदा चिक हचिक दो है कि एक तो हो दो यों यों से ना तो हुआ दे कार्बोनेट्रेट्स पे दे कुरान पिवाजी के साथ हुआ एनर्जी की कार्बोनेट्रेट कुरान पिवाजी का तो ना दे बेसन तांग दे बेसन तांग स्पा दे को दे स्टिंट बो को प्रोटीन पे छाचिन छाना खो हेल्दी छाचिन खो सेहतमंद छाचिन खो सेहतमंद छाना छानी हमारा खोज लाज बच्ची ने छाना गतना आधे फायदा दो है कि कोचा स्टिंट पोस्ट को सीन छाना आधे लूट पोस्ट ngatanga yang dendiga khatot che luspe khatra ma so chune am botans pa magar des lutpo chaye yare sunma to chaye laksul la to chi eta na ya nas kro ata na chi eta na barabar fayda chat magar hafta chi andar ade 200 liter po ya yin ata se chi ba se khatum ba se yang somar chorushi men na khoy enerji khatum chi
1: bakhshis aji sa manar da mojo jo chadrana liquid fertilizer po ngati memos kone fred lekin afan keten so kana donang im boyum bo ngati aji sa bi ran zerna daksa varmi compost zerin chang daksa kulia formen tarad na ngata ki maker fertilizer kun ya dpt ya don urea zer kanu ngata ban ba jo chana

0: एक तो अंगतान स्नो तमर नो दूसरा दो ठीक दुया
1: चले जो थलबा गति योग पद पर जो कैसे देख रहा
0: थलबा योग पनना मिसाल बाकी लिफ्यू स्टेबल मिसाल सागवाक सगने ने ने को को थलबा योग पन दे एफिट्स वो को दे दियो चिन दे तंजे तंजे दे दे से चिन को को दे अजाब रिस हो से को मुश्किल जो चिन जो दूसरा को कारवा ना इन दोस एफेक्टिव छे दो मगर गोभी ओभी फूल गोभी पेंजे तब न फूल गोभी वरंग खराब छे बन गोभी तब नंगोस में छे खतरा छे दुख लिहाजा दू चंग देनी छे मिंदुक पैसे छे बाकी दे शिंगरा मानता बाया ने आता
1: माना अदमो मस्पा हजू साहब हजू गोला मोहम्मद साहब यरंग लेगिना ना तरीला ना मिंग बिंग न तपी लेगिना सहित पे जो छाना यरा एवार संग माना काफी गाता थोप से जरा गाता सोर जो छाना दक्षा गाती यरा जनर गुनी वक्त पे अनुगाती मेमोस को ने जरा सोलर या मतलब क्वींस ग्रीन हाउस ही
0: ग्रीन हाउस ना दो दुखिया दे लद्दाखी ग्रीन हाउस से दो ना मरीश तेल में दिया बाकी यथखाना दो दो की स्वीट चार्टून मिसाल मंगोलोन या साबरन केलोन अतिशान था जरे दोनों ना मुफीद दुया चेदर बने एक तो दोन ला ग्रंग काफी थिया गंदो थाना दोन इस मतंग कंटिन्यू सब्जियों लुश लिहाजा दो नामा मुफीद
1: छाना जी ग्रीन हाउस है या सब्जी रिक या गागा सीजन पे शुरू बार वर्षा दिन और गा टाइम पे का दिन लैंड मार वर्षा दिन
0: ग्रीन हाउस से अंगता यन नने अंगता वक्स का तंगना ने खीरा ठीक दुजो है खीरा तंसपा वक्स के तंसपा से मिसाल गती ओपन यंग जुलाई में लदन में दो मन कम से कम जून यंग दन जा दुया खीरा जरे खीरा चे जमा डोरमो छाना सीडलेस को तंगना मन जबरदस्त योंदु ताना दें यंग दायंग टेक्निक जगह जो 3G कटिंग दे रहे 3G कटिंग का ताना ना माना फायदेमंद कोई 3G कटिंग दे रहा है माँ मुश्किल चीज़ मिल दो कि लीफ पो मिसाल पहला खुलों से एक दो तीन चार पांच सात पंगते कोई दे किल पे आंख खानी दें ना हमारे चार पर उसे दुक लोमा जाता किल पे आने यंग ब्रांच मिल दे दोन चार फांचा देखा ना पांच ना छः ना सात पे जाक से ना दी सात का ना गुच्छा दे फांचा छाना देख नीस पे आने यंग ब्रांच नीस मिल दे देख नीस पे आने ब्रांच मिल माना दें दो बारह सात पचास चुचा बारह लीफ सा बारह लीफ से कहा बारह गो चचा चत पना दे ना चाम से छूटे होना गंगमा मेल पो फीमेल योची छाना फुल खुरे बीन चीना छाना आदू आधे से लबाना फायदेमंद उपे
1: थ्रीजी कटिंग छाना दक्षिण आती यारा अगर ना ग्रीन हाउस यानो माता यारा कोसे चौहात पत पत पी तरीका व दोनों छूटा मत पत तरीका उन दूनी स्कूल आज आती का सा
0: ग्रीन हाउस यान रुन लना ठीक खासी रोशन में चेतर में ये ट्रब अप चां ओपन का तो जागना हो छानला निमा ऑपरेट चाचीन सांला दे दें दाजू लोकसों से खासी चुमिर वस पात दरेस पिद या स्टोन लर्गोशीन दोना अतां दे दें दान्यां इस बार उनला वेंटिलेशन जरूरी मिसाल दरे लदाखी ग्रीन हाउस पर 35 से गाज प्लांट से 35 से ऊपर का तो हीट छाना दो खासी कामयाब मान लो इसमें दो फिर याना शेड नेट तां से याना बर्बान उन फैसे वेंटिलेशन तां से दोन ला एग्जास्ट तां से दो फिंग मरुशीन 35 डिग्री ना कम लो ऊपर उचित नियन में सापो दो लोग ना को दें चीत अपना तब सक्सेस है 35 ने ऊपर छाना मुश्किल था ताना दें दरे एफिट्स ज्यादा होंगे स्नान दें दे स्वीट ड्रीम्स हैं ची अगर बत्ती कौन सा जो आधु मना एफेक्टिव था पिने दो का तो निशुम से तुक ना मना एफिट्स मना चिक मिलूस पर चल मैं टेक बन बस ना तुक स्पा मना एफिट्स चिक जाते में ना बिल्कुल ताना दरे बायो कंट्रोल का तो एफिट्स ना दे दें ना हिसाब अच्छा ना यं मैं मिंदू लिहाजा आते दरे निर्मय और मैं तांसर दुख तांसर ना टेक बन बारू शिने चंग मसले क्या होते हैं
1: चना अजी सब दक्षा गति यारा जरना उनमा स्ट्रिंग तपचोन या मतलब गति से या गाचिश या स्ट्रिंग तिंजे विंजे तपचोन खुसूस गति और रूट वेजिटेबल हो जो दून ला स्ट्रिंग तपचे जो मिसाल बहुत सारे दक्षा गति शेमा पटागानो का सा चना दू गति छू गंदा छू तंग स्पत पिस्टोल के सोच से ना या दू गति सफाई मजाक पाती सुनमुन पर पिस्टोल गंदी
0: देख छू आइन जो दरे ना मा पोल्यूशन यो दर मिसाल युरबा सारे के नंग गाच या गुंचा क्रीट नंग सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिन या कोई ना बाकी मिनरल्स दुनिया से गंबो चुने गंबो यों अचाना दी इफेक्ट ना ये उंग मर्गोस दूसरा ना कि दरे पॉलिथीन इन नंग मिसाल लेज कुरकुरे फलान पिस्तान दिया जब गंमा फास्ट फूड गंमा यों से दरे दिया तंग से मना युरबा सां फ्रांसे दुनिया यों दुक मिसाल चॉकलेट दें दुक ट्रॉफी दें दुक दी दें ना सांग दें लेप्स यों दुक जिंपियां चाना आधुनिक इफेक्ट उंग मर्गोस ਸੋਸ ਦੇ ਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਚੀਨ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਚੀਨ ਨਾ ਛਾਣਾ ਦੂ ਨੀ ਗਨ ਮੇ ਸਪੋ ਛੂ ਮਨ ਮੋਤ ਕੋ ਵਖਸੇ ਤਾ ਮਰੋ ਛਿਨ ਯਾ ਗਾ ਛੂ ਤਾ ਨਾ ਛੂ ਤਾ ਸਪਾ ਮੋਤ

0: from develop by mina bune social development economic development yang ya physical development mental development zanna tas dune sam shik yani sports sikhak chot sports sam chik du develop ban gen lekhir be ur chuk pat pi ya role chik kirdar chik ne bai bachin zanda this ko la tas zanna ka to sak ba sasna la khelen yani khelen khelis jawan di games ya tas sports is pra ta na jawan nisak basang sihat man ul tandrusti ene khu de lux na khu khams pu mana lyak mo or tan poja gat social development ang sak basang ata khel yanu youth yanu digis pu development ki games re ka ke alag alag background na alag alag culture yanu un khani mune baranu chibase to de lux pu jakchin ya chibase khu ni baranu ek bonding children chin zirchas pu ya ek dusre ga chu ga tez respect chi ba go shin zirchas se har ek sujut khan har ek alag alag background na khan mi alag culture alag tradition na khan mi ni ga chu ba se ga tez respect ba chin zirchas se di azu pu ho deno quality sun ga ta ya sports di lung ba no thoba che yang da chu ga ya team yang sports ga ta bokso team ne mo interaction che टीम खुरियानो खिलाड़ी सुसु आपस में इंटरेक्शन चचास बस खुने अनु एक यानी कम्युनिकेशन स्किल पोंग डेवलप बदियो एक छसा इन खंगता स्किल छिन तो आदियो डेवलप बदियो ओ सेंस ऑफ बिलोंगिंग खंगता चिची गिन जस्ट सी दी आजुक पोखन डोर बे यूनिटी है आजुक ने दीदी का नगता आलो सेट चना का तो और आल गतस लु जन का तो की एक नेश सबसे पहला एक स्पोर्ट्स सी यूथ डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यानी रोल सिक यानी किरदार सिंह था मच चेन सोशल डेवलपमेंट और ऑल डेवलपमेंट गतस जन होलिस्टिक डेवलपमेंट ने फिलादिया नगता स्पोर्ट्स बहुत बड़ा रोल सिक अदा बिन तिन जुक मतस देयर इज सोशल सोशल डेवलपमेंट काफी की स्पोर्ट्स सिंह था देना खक दुक या फिजिकल डेवलपमेंट जिस्मानी तौर ज़हनी तौर जमानन या दुन लब जैसे कोई यरिया सेमिना दिन स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा रोल चे दुख जैसे स्पोर्ट्स में जैसे चाना दिन यहाँ से चिकिंग आता टीम मने टीम स्पोर्ट्स हर एक यानी स्पोर्ट्स हम मैक्सिमम आता खेलने का सपोर्ट्स ही टीम ही होता है अरे टीम पुगामेर कम से कम टीम में आता चार पांच नफर छह नफर दस ग्यारह बारह नफर सपोर्ट आता हमें चाना दुनिया सब जिचिक कोई सा मकसद पूछ जी हदफ पूछ जी और सब एक हदफ के लिए स्ट्रगल बने उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप छे कॉज बस दी ये अपने सोसाइटी अंकते लाइफ यानो या एक बहुत बड़ा यानी रोल छे या सोसाइटी अनु और दे यूनिटी यूनिटी तरह लिखे छे या नेशन बिल्डिंग की तरफ लिखे छे से दी बहुत बड़ा एक क्वालिटी छे यानी यूथ्स ने गुजरा डेवलप छे पर्सनैलिटी का एक जो एक मस्बत असर छे तो मचे चाना दुनिया में ना तो खेली स्पोर्ट्स या तो यूथ डेवलपमेंट यानी यूथ सुन ये तरक्की अनु कोई यारिया से अनु एक स्पोर्ट्स यहाँ स्पर्श नहीं चाहिए रोल चाहिए जस्ट जस्ट वो चाना इस पराव मन मामिक सोंग तंग स्वरी इस पराव देखो जब से गुलाम हैदर नेशनल एथलीट जुक्सन कोई कना यंता सोपिक एथलेटिक्स स्कूल लास परेक सुन प्रचो चाना दिन ऑल इंडिया रेडियो कारगिल स्टडी अगर नंबरी का गुलाम हैदर जुक्सो तो गुलाम हैदर जनाता नेशनल एथलीट जुक्सन चाना कोई कना एथलेटिक्स स्कूल ला या त्रिस्वी घंटा सब कुछ चुके सब बस इसलिए ना हैदर से ता यारा यारी रिंथोशन तुस को ना तुस तांसे आकाशवाणी कारगिल स्टडियस के चाय यारा आउजु सेर मुझे जीवाशिस चाना हैदर सर ता नतां सब बस इसलिए ना गरस यारी कना देव तुझ पैसा जो गोमा तारा एक नेशनल एथलीट चीज़ उसने जो रिज़न पर हाची केरेस रिज़ पर हाची केरेस नेशनल सेशन या लद्दाख रिप्रेजेंट बाज़न जो चाना यारी दी सफर पो यारी गर्ल ना शुरू बस और गर्ल्स इवेंट्स जग केरेस यारे ज्वाइन बस इन दासों सब उससे सिन दिस कोर लगा तीन यंत्रन सब पिक्स ना ले रेस मॉल ले रिशेस जो बख्शेस
1: बख्शेस जो यारेस दी कंगा इन्वेट चुए ना नेशनल लेवल सफर से जो ना एथलेटिक्स है ना नी जर्नी स्टार्ट सुन जो 2021 से नुना मैं फर्स्ट नेशनल से जो मची आगा सर आगा शमसुद्दीन मची हाई स्कूल के उतन जो थसगाम हाई स्कूल ना ओ खोस पहला खोरांगा नेशनल कोन हम बो गुलमर्ग खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग से जो देनु पहला खोरांगा पार्टिसिपेट बस और बस से दो ब्रॉन्ज मेडल ना देनु थोब जो देखने लगती कुल इंटरेस्ट एथलेटिक्स

0: sani deka san sang breathing problem na cha manu jo cha na di ka practice cho cho kafi nga ta ardemo du jo
1: makshas cha na jo da sab du nga ta mana demos primus ki yares di nga ta high altitude ko chas bas se nga ta di ang practice bacha nga ta kafi fun ke shil jare di ka nga ta du sta pas jo lada khun di athletics events ni filan kafi potential aur kafi nga ti environment bu nga ti topography kafi feasible cha nga ta di ka sta pas ta jo chana ladakh sem ya athletics events dulat da me judule do tamen ya duli namin ya yo just to do no bulchen namin do tokse ya ga tuk deni ko so so bakhshi do eres mol ya
0: bakhshi jo da 2022 sem cross country ngati ladakh federation jo ngati athletic federation of ladakh zere queens las ba jo baki national jitne bhi national che jo den queens main punangata national problem bidu cha jo winter hai hun jo winter hai mata du se khayu mat ek to grang hai jo chana trial top top athletes sa jao queens chunai base aka national khel ba jo chana den event na dare season hai no event daran sa pe main den hai no event chang khash state championship zare district meet sa zare dun daran sa pa khash masun jo chana de chora age agar ka young me waqt hai no din ka to promote ka chana ya young me waqt hai no national track and field hai no ko district meet state national state championship ka to jagna all fruga madu pata che jo exposure to to na khon kafi dhun la che
1: bilkul chana sab tadian atas dichuk events rik jagna jo the state championships was the district meets are contested to difla ata infrastructure hajo jis tarah ata jese ice hockey was parata hajo matre dikha khel india to events ata dul thon hajo infra infrastructure ko jing ko set tama son den ata stadium ya the cricket is in the stadium was football ata the events ata still just fila trek chief question jo gachuk chur question gach kis tarah ki infrastructure ata gos pa shot ji bakhsh dis ko lachi mon
0: ट्रेक मेन पुनाद इंफ्रास्ट्रक्चर गास स्पोर्ट्स एनुक दिया फील्ड एनुक फ्रून आगे छे मीना मेन पुनुखा इंफ्रास्ट्रक्चर हो से जो बिल्कुल दो अंगती एडमिनिस्ट्रेशन काफी शुक्रिया जरूरत की खुआ अक अंगता तंग सोच जो गेन लंगती दा एयरपोर्ट साइड पे अंगता ग्राउंड पुतां सोच लेकिन देख मेन प्रॉब्लम जी छे जो मचा देखा बस वाज डुल बिनु जो मेन देख छे मीना अगर सुबह शाम का तो बस का तो ना ओ एक 12 किलोमीटर से होता लगभग 11 12 किलोमीटर से दूर दूर जो मेन सिटी ना चांदी के वन जो से चाय आके चाना एथलीट मेन स्ट्रगल टे मेन उतना खा एफर्ट छ मिनट जो चाना इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही दुख जो आता के ट्रैक पर मा बेहतरीन ता सोच चाना देखे छ मिनट आता ट्रांसपोर्ट सिस्टम पुचोना दमो दुख जो
1: चनु इंशाल्लाह जो यूं जस्ट चने तू सुन रहा आता अति एडमिनिस्ट्रेशन बाकी आती ये खखोर ने खास कर आती जानो यारस बोल्स एथलीट्स फेडरेशन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ लद्दाख जरा जो दुन नमस ये तो सुन का नमाज अक्सर जो ध्यान तासे यूं तू सुनानो एथलेटिक्स से फिलहाल दी प्रॉब्लम ना ता सॉल्व और सॉल्व होगा से इंशाल्लाह दी तो इवेंट्स ना ता डू लुका जो यूं जैसे तू समो इंशाल्लाह यहां तो बहुत सारे ना ता जवान ना जाए अपॉर्चुनिटी ना ता स्कप स्टॉप तो
0: बिल्कुल
1: सर जो ता ध्यान एथलेटिक्स से फिलहाल जो सबसे पहले ना गा स्पोर्ट्स से ना जो दो ना ता पहला प्रैक्टिस ट्रेनिंग चीज से गया ना ता एक सीनियर चीज या कोच चीज हो दुख से सबचस पमाना छछा और खचन जसन को सर छन दियन न तंगा ट्रेनिंग जम छ छछाइन रुगो स्पाइन जुगा फ्री मता युच दरे समय अंक जॉइन बो गया एथलीट सी दी फील्ड पे कोई नुकसान न गतु जु गद ति ख ट्रेनिंग जिन मोशन जो और गारिलू रा मता दे तो ट्रेनिंग अता जंग स्कोप जि या नता दे तो सिस्टम जि या गल सिर जि गोता मे जि बक्स दिस को लमन
0: ट्रेनिंग जरना अतेज ना साल भर एथलेटिक्स दे सु इवेंट जो यहां रनिंग पो ए गेम सा आई मीन सो आ गेम वेब चार गोस पे जो लेन मेन पे आ रहा ची ट्रेनिंग जरना संडे जा सा रे सुम जो बाकी हम कंटिन्यू 6 साल अचा दे नु सो सुन जो ठीक ठाक प्रैक्टिस जो से दिया 6 साल पे कंटिन्यू अच प्रैक्टिस जो चा और संडे जा अच रेस्ट जो तुम जो बाकी मेन पुन आता है एथलेटिक्स सी मा दी का कोच मिल जो कोच मिल पन अच खुद से देखा देन बेन कुछ कुछ करके हम करते थे जो छाने देख ना तुम खुद डरे एनआईएस पटियाला सों से कोर्स जो सों जो एथलेटिक्स से
1: ओ
0: छाने जितना फ्रू यंग जो क्वींस एथलेटिक्स एंड कोर्स जो दिया दिस सो नेशनल नेशनल से ना आगे यंग में फ्रू सांग क्वींस कोच जो से कोच एज ए कोच खान गाइड जो से दी लेन पेनुक क्यों मा यानी जो
1: मकसद अचानक जो दी ना

0: मुझे ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: Dhrintes program yang ini pun yang sepatut nonifia. Program yang sertakan pun min Gulzar Hussein dan program percukan pun min Muhammad Sadiq. Medium wave kedua Akashwani Kerilin.

0: दोस्ताना माहौल से, घरेलू माहौल से कहे, कुछ भी कहे, मतलब यहाँ आर्मी और सिविलियन का बिल्कुल आपस में एक रिश्ता बना हुआ है। हमें उम्मीद है कि आगे भी कायम रहेंगे और खासकर करगिल के लोग जैसा पेट्रियाटिक के जज्बे से सरशार लोगों का लोग मिलना बहुत मुश्किल है। सर्विस सपोर्ट्स उनको भी कहूंगा, अगर कोई जगह मिले, अगर ये आर्मी की तरफ से हमें ग्राउंड बनाने के लिए दे दे, तो उसमें हम कैपेक्स में या खाई पे फंड रख के अच्छा खासा एक ग्राउंड बना सकते हैं बच्चों के खेलने के लिए। प्लस अभी फॉर द टाइम बीइंग इसको थोड़ा सा एक अच्छा सा शेप देने के लिए मैं अनटाइड फंड में से इंशाल्लाह 3-4 लाख रुपया इनको या आर्मी के थ्रू या हमारे यूथ सर्विस सपोर्ट के थ्रू दे रहा हूँ।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू दरिंगलखा मध्य प्रदेश ला शिपौरला कुनहुट नेशनल पारागत चीता मित्रो दुना शराया कबीले अरखान थुक से प्रोजेक्ट चीता दुना रचन सहस्त्रों से यकपंग दी कबीले लस्से रुनी स्तोद्रा बसिन दी प्रोजेक्ट पे गोजुकपु वजीर अजम नरेंद्र मोदी सना लोस्तुंग निशोर सकंग गोजुक बस खान इन वजीर खारजा डॉक्टर एस जे शंकर सी सरकारी खोरी गोमात सिरी योगा मंगोलिया लिपसिन सोशल मीडिया पोस्ट स्त्रोलिकर डॉक्टर जे शंकर जरीन खोइंस भारत मंगोलिया बरियां चिक डिल पोस्ट के लखमफियत हम फोग्राफो बसित जरीन दी जिक्स खोर पोजना जनाब डॉक्टर एस जे शंकर मंगोलिया वजीर खारजा ने यंबो थुक चैन सुक डॉक्टर जे शंकर खुरी जिक्स खोरी निसी रिसी सिरी योगा जनूबी कोरिया जिक्स खोरी का छछैन दिवासला जनूबी कोरिया वजीर खारजा चो उन नंगंबो थुक से तम फोग्राफो बचैन भारतीय जनता पार्टी सदर नितिन नबीन ने दरिन सगेती खसपना पद्म भूषण अवार्ड थोप खन सरदार सिंह जोही नंगंबो लुधियाना थुक से पंजाबी सगेत पावनी गुप्सकोर पेस्कोरला तम फोग्राफो बसिन फीफा वर्ल्ड कप सना लुस्तुंग निशूर अद्रुगिन दिरिंग मोतोगा वनक्योर ला मिसरिका न्यूजीलैंड गोल्समिस लुमसेन लिवरपोली मिंगबिंग खिलाड़ी मोहम्मद सालिस टूर्नामेंट खुरी गोमा गोल पोतां से मिस्र टीम पो ग्रुप जियं गोमा सिरपेकल हेपचुकसिन गुंदिया सनला कैलिफोर्निया सस्कानी ग्रुप जी दुरपेंग ईरान बेल्जियम ड्रालुस नमजेस कुरान दिन करगिल यमी सदी थिक पुखे मोरसिन निशूर सच भी अशारिया जी डिग्री सेल्सियस जंगुंदिया सने इंसार सने चुंगिस अशारिया गा डिग्री सेल्सियस लिया दिन यमी सदी थिक पुखे मोरसिन चुज भी अशारिया अर्गत डिग्री सेल्सियस जंगुंदिया सने इंसार सने अर्गत अशारिया सिफर डिग्री सेल्सियस द्रासले दिन यमी सदी थिक पुखे मोरसिन निशू अशारिया अर्गत डिग्री सेल्सियस जंगुंदिया सने इंसार सने त्रुक अशारिया त्रुक डिग्री सेल्सियस पदुमा दिरिंग मी साथी तिपु की मार्चिन चुरगु अशारिया चिक डिग्री सेल्सियस जंगुन दिया छने इन सर्सिन अर्चु अशारिया सिफर डिग्री सेल्सियस तक्सना चासुं दियानां बो दक्सा सपे खबर उन संग खदाई फगरिंग।

0: ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಗದಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕರಿಗಿಲಿಂದ ವಾಸ್ಬ ಖಬರನ್ನು ಚಂದು ಕಸದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಶ್ರೀನಗರ್ನ ಉರ್ದಿಯಂ ಖಬರನ್ನ ತಪ್ಸರ ರಿಲೇಬೇತ್ ರಿಲೇವಿಲಾ ಡಾಂಗ್ ಬಾಸೆತ್.
1: मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना.
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक.
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ. नो सिग्नल.
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना.
2: बुद्धू सुधर जा.
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई.
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय.
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट.
5: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो.
6: TLI है ना.
7: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी. अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर.

0: माता खीर भवानी मेले के सिलसिले में टिकर कफाड़ा देवसर और मंजगाम कोलगाम नीज लोगरीपोरा अश्मकाम में भी पूजा पाठ की खसूसी तकारीब मुनक्द हुई जिनमें काफी तादाद में पंडित बरादरी के लोगों ने शिरकत की और आलम इंसानियत की बका और जम्मू कश्मीर में मुकम्मल अमनो अमान के लिए दुआ की। कई श्रद्धालुओं ने हमारे नुमाइंदे साबिर अयूब तसदुक रशीद रफीक अहमद और खुर्शीद पडरू के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया।
1: मैं प्रार्थना यही कर रही हूँ जो हमारी माता खीर भवानी से कि जो हमारा त्योहार है हर साल हम ऐसे खुशी से मनाते रहे बट हम जम्मू से ना आए हम कश्मीर में रह के ये त्योहार मनाए। तो ये दुआ है मेरी माता रानी से। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव है, हमारे साथ बहुत ही अच्छे है, उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों की बातों में आके रिश्तों को कोई खराब मत करो, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, भाई भाई है, पहले भी कहा गया है, आपस में प्यार रखिए, भाईचारे रखिए।
2: आज माता खीर भवानी मेल डिस्ट्रिक गांधरबल तुलमला तो ये क्राउडन एप्रिशिएट कर एडमिनिस्ट्रेशन यूत असल प्रोग्राम थो हर कह फैसिलिटी कर प्रोवाइड खास कर मुसलमान बच्चे शान बशान सत
1: माता खुद यहाँ विराजमान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम शुक्रिया करते हैं, पहले धन्यवाद उन लोगों करते हैं, यहाँ के लोग उनसे आज बहुत सपोर्ट करते हैं।
0: मेले के तालुक से इन तमाम मकामात पर आपसी रवादारी और मजहबी भाईचारे के मनाजिर देखने को मिल रहे थे और मकामी मुसलमान बरादरी ने मेले के दौरान पंडित बरादरी की लोगों के लिए मुख्तलिफ सहूलियात दस्तियाब रखी थी। एक रिपोर्ट के साथ गांधरबल से हमारे नुमाइंदे।
3: हर साल की तरह इस साल भी मुल्क भर से आए हुए हजारों अकीदतमंदों ने माता खीर भवानी के मंदिर में हाजिरी दी जबकि मुस्लिम आबादी इनके इस्तकबाल और सहूलियतकारी में भरपूर किरदार अदा कर रहे थे। पुलिस की तरफ से पुख्ता सिक्योरिटी इंतजाम के बीच इंतजामिया ने सेहत ट्रांसपोर्ट बिजली पानी और सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए थे जबकि रजाकार अंजनों की जानिब से जाहिरीन के लिए पानी मशरूबात का इंतजाम भी किया गया था। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के लिए तुलमुला से मैं साबिर अयूब।
0: दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी आज जेश अष्टमी के मौके पर तुलमुला गांधरबल में माता खीर भवानी मंदिर पर हाजिरी दी और लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन तरक्की और लोगों की फलाह बहबूद के लिए दुआ की। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एलजी ने मेला खीर भवानी के ताल्लुक से किए गए इंतजाम पर इंतजामिया और दीगर एजेंसियों की तारीफ की। पंडित बरादरी के लोगों के साथ बात करते हुए एलजी ने कहा कि इंतजामिया इस तबके के लोगों के मसाइल हल करने की वादाबंद है। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए एलजी ने कहा
4: जम्मू कश्मीर में सुख शांति और समृद्धि रहे, शासन ने बेहतर इंतजाम किए और भी आशीर्वाद कई वर्षों गुड़वा में भारी संख्या में श्रद्धालु आए और ये आशीर्वाद सब पर बना।
0: इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग, डीसी गांधरबल जतिन किशोर और इंतजामिया और पुलिस के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जेष्ठ अष्टमी के मौके पर पंडित बरादरी के लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि इस तरह के त्योहारों से अमन उखवत और आपसी रवादारी के रिश्ते मजीद मुस्तहकम होते हैं। दरियास्ता बीजेपी जम्मू कश्मीर के कई लीडरों ने भी आज तुलमुला में माता खीर भवानी स्थापन पर हाजिरी दी। इनमें पार्टी के सदर सत शर्मा, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर खान और कई दीगर लीडर शामिल हैं। बीजेपी स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद अमीन शाह भी इस वफद में शामिल थे। उन्होंने पंडित बरादरी को मेले की मुबारकबाद दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तालीम के शोबे में मसनू

0: पर श्रद्धालुओं के लिए आला मयार की सहूलियत दस्तियाब रखी। उन्होंने यात्रा के दौरान ट्रांसपोर्ट के इंतजाम का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यात्रा के बाद सफाई सुथराई का काम भी हाथ में लिया जाना चाहिए ताकि इलाके के माहौलियाती तवाजुन पर कोई बुरा असर न पड़े। इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने यात्रा के लिए किए गए इंतजाम का खाका पेश किया। बाद में सकीना इतू ने गवर्नमेंट अस्पताल पहलगाम का भी दौरा किया और इसकी कारगुजारी के बारे में जानकारी हासिल की। खारजी उमूर से मुतलिक पार्लियामानी स्टैंडिंग कमेटी ने मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर की कयादत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 4 रोजा स्टडी दौरा शुरू किया है। इस दौरान कमेटी बॉर्डर सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी जैसे मामलों का जायजा लेगी। आकाशवाणी के नुमाइंदे ने खबर दी है कि कमेटी रवां महीने की 25 तारीख तक जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह का दौरा करके सरहदों की निजामत और सरहदी इलाकों में सलामती सूरत हाल का बरसर मौका जायजा लेगी। कमेटी के अरकान अगले इलाकों में सीनियर सिविल और फौज के आला हुकाम के साथ साथ मकामी लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुलरहीम राठर ने आज दारुल उलूम पखरपोरा का दौरा करके वहां हालिया आग से मुतासरीन के साथ यकजहती का इजहार किया। उन्होंने वहां तलबा, अमले और मकामी लोगों के साथ मुलाकात की। स्पीकर मौसूफ ने जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि वो तरजीही बुनियादों पर आग से हुए नुकसान का तखमीना लगाएं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स के कौमी सलामती मुशीरों की दो रोजा मीटिंग शुरू हुई। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल की सदारत में मुनक्कद हो रही इस मीटिंग में ब्लॉक के 11 मेंबर ममालिक के सिक्योरिटी सरबराह शिरकत कर रहे हैं। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। मीटिंग के दौरान कौमी सलामती के लिए उभरते हुए चैलेंजों का मुकाबला करने और नई टेक्नोलॉजी को बरोएकार लाने से मुतलिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। भारत चौथी मरतबा ब्रिक्स की सदारत कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में इसकी सदारत की थी। बरतानिया के वजीर अजम केयर स्टॉर्मर ने वजीर अजम और लेबर पार्टी के रहनुमा के ओहदे से इस्तीफा दिया है। जम्मू कश्मीर को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदोमत से जारी हैं। मुनशियात के खिलाफ एलजी का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदामात और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से एक उस्ताद शबीर हुसैन राठर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: नशा एक ऐसी खामोश तबाही है जो नौजवान नस्ल के ख्वाब, खानदानों की खुशियां और माशरे का सुकून छीन रही है। अगर हम वाकई एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं तो हमें आज से ही इस तूफान के खिलाफ मुतहिद होना होगा। वालिदैन अपने बच्चों पर तवज्जो दें, असातिज़ा सही रहनुमाई करे और नौजवान मस्बत सरगर्मी को अपनाए। सब मिलकर अहद करे कि मोहब्बत, शऊर और तालीम के जरिए अपने माशरे को मंशियात से पाक, महफूज और खुशहाल बनाएंगे ताकि आने वाली नस्लें सुकून और इज्जत के साथ जिंदगी गुजार।
0: बीजेपी रिफ्यूजी सेल के कन्वीनर एस बलविंदर सिंह सूदन की सदारत में सिख तबके का एक वफद जम्मू में मेंबर पार्लियामेंट और बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा से मुलाकात हुआ और उन्हें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सिख तबके के लोगों के मसाइल पर मबनी मेमोरेंडम पेश किया। सत शर्मा ने वजीर दाखिला अमित शाह के नाम लिखा गया ये मेमोरेंडम वसूल किया और वफद को यकीन दिलाया कि इसे मुतलका हुकाम तक पहुंचाया जाएगा। बीजेपी जम्मू कश्मीर के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप महोत्रा ने एक बयान में कहा है कि वजीर अजम नरेंद्र मोदी की कयादत वाली हुकूमत ने पिछले 12 वर्षों के दौरान मुल्क के किसानों की जिंदगी में मुस्बत बदलाव लाया। उन्होंने कहा कि गुजश्ता रोज पीएम किसान की 23वीं किस्त के तहत 9,44,00,000 किसानों में 18,880 करोड़ रूपये तकसीम किये गये। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज गौसे अस्पताल खानियार में 1,25,00,000 रुपए मालियत के जदीद आलात और मशीनरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों को

0: ملی موبائل دی آکاشوانی کرگلی نوخس پو خبرن چندو کستا آکاشوانی دلی نا ہندی انگریزی دن اردیان خبرن ریلی بیت ریلی بلا ڈاں بازت
1: اتر پردیش کے لکھنؤ کوچنگ سینٹر میں آگ لگنے سے 15 لوگوں کی موت مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ نے اچ استریہ جانچ کے آدیش دیے ادھو ٹھاکرے گٹ والے شیو سینا کے 6 لوک سبھا سدسیہ شیو سینا ایک ناتھ شندے گٹ میں شامل بھارتی ریلوے نے پوروی تٹ ریلوے کے 631 کلومیٹر کے مارگ پر سوچالت ریل سرکشا پرنالی کوچ کو منظوری دی ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्र ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते तालिका में भारत शीर्ष पर और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा अब समाचार विस्तार से लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के केजीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिस कर्मी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
3: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए। प्रमुख सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना की कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
4: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के और नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
2: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
5: निभाया, देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिदर बंबू जी बैठे हैं,

जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है।

0: के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सर तेग बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं क्षमता निर्माण संस्कृति शिक्षा सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उप सचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाईं। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के

0: बीएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर 94.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: conflict in West Asia. We have a report.
1: The Sensex rose to 91 points to close at 77,094, while Nifty jumped 90 points to settle at 24,103. In the forex market today, the rupee depreciated by 35 paise to close at 94 rupees 68 paise against the US dollar. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 1.2% up at 1,49,360 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.3% higher at 2,39,260 rupees per kilogram a short while ago. With Intercarb's report, Lalema Aneja Dang for Akashwani News.
0: On to sports. In shooting, India added four more medals at the ISSF Junior World Championship, including a gold medal by teenager Pritam Kendre at Suhul in Germany, to strengthen its position at the top of the medals tally. India's overall medal tally has now risen to 12, comprising 5 gold, 1 silver and 6 bronze medals. In the FIFA World Cup 2026, Argentina will take on Austria in Group J fixture tonight at Arlington in US. The match will begin at 10:30 p.m. Indian Standard Time. Earlier this morning, Egypt beat New Zealand 3-1 in Vancouver to register their first ever World Cup victory. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Massive fire at Lucknow Coaching Centre in Uttar Pradesh claims lives of 15 people. Chief Minister Yogi Adityanath orders high-level inquiry. Prime Minister Narendra Modi says India is world's fastest growing economy and emerging as a reliable global power. Six Lok Sabha MPs from Shiv Sena UBT join Eknath Shinde-led Shiv Sena. Indian Railways approves deployment of automatic train protection system Kavach on 631 route kilometres of East Coast Railway. UK Prime Minister Keir Starmer announces resignation amid turmoil in Labour Party. At ISSF Junior World Championship, Indian shooters add four more medals. And in FIFA World Cup, Argentina to take on Austria in Group J fixture at Arlington tonight. That is all in the news at 9. Good night.
2: Aadab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Shamim Ahmed. उत्तर प्रदेश में लखनऊ कोचिंग सेंटर में लगी आग के एक बड़े हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेजी से उभरती हुई और काबिल भरोसा मईशत है और हमारा मुल्क एक काबिल भरोसा आलमी पावर के तौर पर भी उभर रहा है। शिवसेना यूबीटी के 6 लोकसभा मेंबरों ने पार्लियामेंट में एकनाथ शिंदे की क्यादत वाली शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की है। भारतीय रेलवे ने मशरकी साहिली रेलवे के 631 किलोमीटर तवील रास्ते पर ऑटोमेटिक रेलगाड़ी तहफुजाती निजाम कवच शुरू किए जाने की मंजूरी दी है। इंग्लैंड के वजीर आजम कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी में जारी टूट फूट के दौरान इस्तीफा दे दिया है। ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने प्रीतम केंद्रे के हासिल करदा सोने के एक तमगे समेत 4 मजीद तमगे जीत कर फहरिस्त में आला मकाम हासिल कर लिया है और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ के अलीगंज इलाके में आग लगने के एक अलमनाक हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं, जिनमें से ज्यादातर की उम्र 16 से 25 बरस के दरमियान थी और ये तालिब इल्म थे। यह हादसा आज से पहर उस वक्त पेश आया जब अलीगंज में पुरानिया इलाके की एक दुकान के ऊपर वाकई एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसके सबब तलबा में बेचैनी पैदा हो गई। 6 तालिब इल्मों को KGMC लखनऊ में दाखिल कराया गया है। ज्यादातर अमवात घुटन के सबब हुई। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: बताया जा रहा है कि ये आग इंस्टीट्यूट की इमारत के अंदर लगी और तेजी के साथ फैल गई और लोग अंदर फंसे रह गए। ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जहां कोचिंग सेंटर, गेम जोन और शोरूम थे। आग बुझाने वाले अमले की टीमें, पुलिस अहलकार और जिला इंतजामिया के अफसरान जाए हादसा पर पहुंचे और राहत और बचाव की कार्रवाई शुरू की। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। आग बुझाने वाले अमले के अफराद ने दीवार को तोड़कर और इमारत में दाखिल होकर लोगों को बचाया। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने कहा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पर मुश्तमिल आला सतह की एक टीम इस मामले की तहकीकात करेगी और

0: प्रीतम केंद्रे ने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल जूनियर मुकाबले में सोने का तमगा हासिल किया। इस तरह उन्होंने चैंपियनशिप में भारत के लिए 5वां सोने का तमगा जीता। ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल टीम मुकाबले में अंजलि महेंद्र भागवत, परीक्षा गुप्ता और निथिला आईवी डार्लिंग प्रवीण क्रिस्टोफर पर मुश्तमिल टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। भारत ने मर्दों के 25 मीटर पिस्टल जूनियर टीम मुकाबले में भी कांसे का तमगा हासिल किया। अभिनव चौधरी, राजचंद्र और जतिन पर मुश्तमिल टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कांसे का तमगा जीता। इससे पहले अनवी राठौर ने ख्वातीन के 10 मीटर एयर राइफल जूनियर मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। इस तरह भारत के तमगों की मजमूई तादाद अब 12 हो गई है। इसमें सोने के 5, चांदी का 1 और कांसे के 6 तमगे शामिल हैं। फीफा आलमी कप 2026 में आज रात ग्रुप जे के एक मैच में अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय मियारी वक्त के मुताबिक रात 10:30 शुरू होगा। मैच अमेरिका के अर्लिंगटन में होगा। रात देर गए 2:30 फिलाडेल्फिया में फ्रांस का मुकाबला इराक से होगा। इससे कबल आज सुबह मिस्र ने न्यूजीलैंड को 1-3 गोल से हराकर पहली मर्तबा आलमी कप का कोई मैच जीता और इस तरह उसे ग्रुप जी में पहला मकाम हासिल हो गया। आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कोचिंग सेंटर में लगी आग के एक बड़े हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेजी से उभरती हुई और काबिले भरोसा मईशत है और हमारा मुल्क एक काबिले भरोसा आलमी पावर के तौर पर भी उभर रहा है। शिवसेना यूबीटी के 6 लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट ने एकनाथ शिंदे की क्यादत वाली शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की है। भारतीय रेलवे ने मशरकी साहिली रेलवे के 631 किलोमीटर तवील रास्ते पर ऑटोमेटिक रेलगाड़ी तहफुजाती निजाम कवच शुरू किए जाने की मंजूरी दी है। इंग्लैंड के वजीर आजम कीर स्टेमर ने लेबर पार्टी में जारी टूट फूट के दौरान इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: तरें तजाकाश वानी दिल्ली ना हिंदी अंग्रेजी तो ना उर्दियां खबर लाइन ने जोत पिन मीडियम वेव के दिवा काश वानी कर गिलें वक्सबत साने तो सतुर गुना फेट संसुक कसता प्रोग्राम ने नजत गिरु लुक्स प्रोग्राम प्रचुखन पुइन सच्चाद अली
2: आकाशवाणी करगिली रिनमुचे स्नमाबिन खन मीमांस गांव या रिशिक यंती मेजबान सज्जाद अली शुजाती जुना सलाम पो प्रोदमचन सुशिक स्नीर दान जागत यंतं युले सरम सुनज गंगमा गामल सजगी का जुक्से मचे फेसपदी स्क्रक्रिमित सिरपा स्नाबिन योतना नतमे छतमे मिसे स्कित लेन दुक जापो चंद्राल यंग गुरलुक से खतुसे नाजोंस अध्यार से सिरपें नतेस बियरजा शरबीर गमे सहयत पानी थतखर गमुन नंगेंबो तुक्समेत मेमांग से चोसना लेन मचे गुमसिर निसबसे सगेत बद बे जोस्तान थोनित पी नक्सबरतुन ना स्ट्रचन लेन गोजत पी गुमसिर निसकोरपें मुकांग दिरिंग सिरपें जिपसल बसे Jaltana Hagun, Yenterin Janstan and Sapa, Klepchupi Praluxlet. Rinmuchasna Bakanan, Yerangmanga, Rilunsi, mean Jaspus Najakse, D. Schmangpungatangimbo, Barpese, Japangatangin just met. Missanguk Zonzik Chigur Jarigiona, Das Saular Tene, Das Saula Bufse, Degana Tobi Kazasun Zin, Missi Tad Grana Natsadunigana, Rana Rounsa Strumse, Scopse Japi, Ching and Tignates, Praluxpacha. Derin moche sekhat pekana yarang manga khazastobet starji ni brot den manga ta nyen jashet yang ka dumba da pochigang yarang mangi stanchan skratna sten dani desakhat bungati singin soti bransal den jashet ngati phames ponis samsek chare disperau zespinzuk bupsna sarten mentasna samsek nasnar kablashigang pokna ngati fya desau chor den sekl dani ngatangyam bo Matimisan Lushashat. Yorinjan Stangabakanon, during a Fespa Porkasi Serpenuk, Natas Ladarsenuk, Namze Gurlux Natese, Gansrin Urnambu, Jin Chachaspu, Zamzik Saget Bad Bella Zonica, D. Asar Porenchigot, Young Matisse Sospe, Strunglux Bachaspenuk, Yulmini Gazat Karchigot, D. Shmon Gang Miskorpenuk, Inonmental Science Caspa, Young Namzen Yunyotbi, Gurlux Baker Kellal Chapsukan. Kaspa, Jafar Ali kana pespawa singates sachan shmaunika spread bi praluks bachabet. Assalamu alaikum Jafar Ali sir.
3: Wa alaikum salam.
2: Goma yara akashwani kargil studio nuk fefsus na welcome juju. Ta ngates tuspungin se chaspus na ngai jaxse ngata

0: गोस्तिक बुमे तो है बिल्कुल छ
1: दो न चाम छ न्यान मि हिसाब पो चंग चंग मला सुख सुख पो छ इन जु कसा दे चंग मला सुख चुक चस पो मन फायदा जुमे दे जु
0: बख्शिस
1: कसा दे के न वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट बो छ इन जु कसा दो न ngates awareness tang mo shin ju gaung gaung block level ka awareness tang mo shin chu cham shik temat yo chu cham shik ngata azisho daksa yal chang